0: इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तेरे नाम फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म का गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। आइए अब सुनते हैं तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का गीत, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर

0: के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए अब सुनते हैं ताल फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म का गीत, आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। आइए अब सुनते हैं दहक फिल्म का गीत, जिसे गाया है हरिहरन और साधना सरगम ने। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए दिल चाहता है फिल्म का गीत, जिसे गाया है श्रीनिवास ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

अभी आपने सुना श्रीनिवास की आवाज़ में दिल चाहता है फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

आवाज़ में साथिया फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए हलचल फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं शान और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है विद्या सागर ने।

अभी आपने सुना हलचल फिल्म का गीत, आवाज़ें थी शान और अलका याग्निक की। लीजिए अब सुनिए अंधाधुन फिल्म का गीत, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने। गीत को लिखा है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म से अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं गुरु फिल्म से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर उर्दू में समाचार रिले।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु

0: सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है।

0: नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मेट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under-construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional network.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा शांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों

0: इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जम्हूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आज़ाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को ख़त्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का अहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में ख़त्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रैली के ये इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकाम पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकाम के जरिए मुनशियात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगाम की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज, नीज, आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई

0: जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गाँव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है, जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमीन के मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और CBI जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से, जिसे गाया है A.R. रहमान और सुखविंदर सिंह ने। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है A.R. रहमान ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना के तहत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के साथ वर्चुअल बैठक में ये स्वीकृति दी। श्री चौहान ने इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 216 करोड़ रुपए और कृषि उन्नति योजना के तहत 124 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। राजस्थान के लिए वर्ष 2026-27 में 849 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 509 करोड़ 62 लाख रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को शुभकामनाएं देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि किसानों को समय पर और सुगमता से ऋण सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री

0: भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे आज श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन करेंगे। श्री शर्मा धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे आज ही बीकानेर के मेघासर में मेघोजी की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण और विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और ड्रोन शो में शामिल होंगे। शाम को वे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कल ध्वजारोहण करेंगे और युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 में युवाओं से बातचीत करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि आज के ड्रोन शो में एक साथ 600 ड्रोन उड़ान भरेंगे। इसके माध्यम से कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और राष्ट्र से जुड़ी आकर्षक आकृतियां बनाई जाएंगी। स्वाधीनता दिवस से पहले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सभी जिलों में विभाजन विभीषिका से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में विभाजन के दौरान विस्थापन, पीड़ा और संघर्ष की स्मृतियों को दर्शाया जा रहा है। पाली में कैंडल मार्च और स्मृति संध्या रखी गई है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में लगी प्रदर्शनी में वर्ष 1947 में हुए विभाजन की पीड़ा और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है।
1: जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, 2 मिनट का मौन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कैंडल मार्च भी आयोजित किए जाएंगे। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी जन भागीदारी के कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को विभाजन की पीड़ा और संघर्ष से अवगत कराते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी विभिन्न गतिविधियां जारी हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: इस बीच हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश भर में परवान पर है। सरकारी कार्यालयों, स्मारकों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा थीम पर सजाया गया है। सवाई माधोपुर में जगह जगह तिरंगा कैनवस लगाए गए हैं, जिन पर लोग हस्ताक्षर कर राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के संदेश लिख सकते हैं। वहीं हर ग्राम पंचायत में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों का सम्मान किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और आमजन के प्रति संवेदनशीलता की नीति से काम कर रही है। वे कल जयपुर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने सीएलजी सदस्यों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग का सेतु बनकर सुरक्षित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने सीएलजी बैठकों को क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा का प्रभावी मंच बनाने को कहा। साथ ही असामाजिक तत्वों, नशे के कारोबार, महिला और बाल सुरक्षा, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनाव से जुड़ी सूचनाएं समय पर पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की अपील की।
2: आज हमको चाहिए कि जनता के अंदर विश्वास हो, पुलिस का विश्वास हो, सीएलजी के सदस्यों का विश्वास हो और अपराधियों में भय हो कि मेरे पड़ोस में सीएलजी का सदस्य रहता है, अगर मैं थोड़ा भी कहीं आगे बढ़ा तो मैं जेल के अंदर जाऊंगा, ये उसको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे अपराध हो या बड़े अपराध हो, छोटे अपराधों से ही बड़ा अपराध होता है। हमको पुलिस और आमजन के बीच में विश्वास, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण सेतु है, हमें उस सेतु को बनाए रखना है। अच्छी कानून व्यवस्था में पुलिस के साथ ही समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना समाज के कुछ नहीं हो सकता।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अनुसार अगस्त 2026 से शुरू हो रहे भर्ती चक्र में

0: 8,11,000 से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 5,08,885 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। वहीं उपनिरीक्षक पुनः परीक्षा 2021 में 2,18,000 से अधिक अभ्यर्थी 20 सितंबर को परीक्षा देंगे। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 30 अगस्त और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को होगी। आयोग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीकानेर पुलिस ने सीआईआर पोर्टल की मदद से गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेंज के महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि इन फोन को सिर्फ एक महीने में बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है।
1: 200 मोबाइल जो है करीब 50 लाख के हैं जो रेंज टीम ने और जिला पुलिस ने रिकवर किए हैं। कहने को तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन किसी का अगर खोया मोबाइल वापस मिलता है तो उसको बहुत खुशी होती है। कई लोगों के लिए उनके लिए बहुत अमूल्य है। आम लोगों से यही अपील है कि आपका अगर कोई मोबाइल खोता कम से कम उसके एनपीआर या कुछ ना कुछ दर्ज जरूर कराए, वरना यही मोबाइल जो आगे जाके कोई क्राइम में किसी चीज में जैसा आपको देखा होगा उसमें सीरियस क्राइम में भी यूज हो सकता है। तो आप कम से कम एनपीआर दर्ज कराए, थाने में की सूचना अवश्य दे ताकि हम इसको ट्रेस कर पाए।
0: बालोतरा के जानियाने में जल्द ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सीएसआर के फंड से राज्य सरकार को 22 करोड़ रुपए देगा। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में HPCL और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच इस संबंध में MOU हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज से क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के महत्व बेहतर अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि कॉलेज में रिफाइनरी की जरूरतों के अनुरूप रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत करीब 340 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिन के श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले के दौरे पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए व्यापक तैयारियां पूरी की। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
3: अरे अम्मा जी, जरा मुन्ने को संभाल लेना, मैं बाबूजी के लिए चाय बना रही हूँ।
4: देखती हूँ। अरे रे रे, इसने तो पोटी कर दी। अरे बेटा, तूने तो सारे हाथ पांव सब सान लिए। अरे मुन्ने के दादाजी।
5: अरे क्या है,
4: जरा एक लोटा पानी का तो लेकर आओ।
5: वो बहू कहाँ गई?
4: वो तुम्हारे लिए चाय बना रही है।
5: ठीक है, आता हूँ।
6: ये लो, लो दो।
4: हाँ जरा ठीक से डालो।
6: लो, लो, लो।
4: इधर इधर इधर।
6: ये ले,
4: लो। तुम मुन्ने को संभाल लो, मैं बहू को जाकर भेजती हूँ।
5: अरे लेकिन सुनो तो सही, पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ तो धो लो।
4: क्यों, क्या हुआ? मुन्ने की ही तो पॉटी है और मुन्ना तो सिर्फ दूध पीता है, ये कौन सा नाच खाता है?
5: अरे बावली, वैसे बीमारी के कीटाणु तो मल चाहे बच्चे का हो या बड़े का, दोनों में ही होते हैं। इसलिए पॉटी साफ करने के बाद भी अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने चाहिए।
4: ये मेरे राम जी, मैं तो समझती थी कि दूध पीते बच्चे के मल में तो गंदगी के कीटाणु हो ही नहीं सकते। अच्छा हुआ जी जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आती हूँ और बहू को भी समझाऊंगी कि हमेशा बच्चे की पॉटी धोने के बाद साबुन से हाथ धोकर ही काम करे।

0: कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए अब सुनिए हेलो जयपुर।
7: हेलो

आज को इतना बेहतरीन बना दें कि कल जब याद करें तो चेहरे पर स्माइल आ जाए। बस इतना ही करना है आपको, कल की चिंता थोड़ी कम और आज की खुशी थोड़ी ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, शुक्रवार की सुहानी सुबह में स्वागत करते हैं आपका हेलो जयपुर में। स्वीकार कीजिए शिखा शर्मा का नमस्कार। सेहत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए हर फ्राइडे को हम जुड़ते हैं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़ में।

0: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज के प्रायोजक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर टॉक रोड टॉक फाटक गांधीनगर जयपुर।
1: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर पर, जहां यूएसए एफडीए अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
2: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर टोंक रोड टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
0: श्रोताओं, आज डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज में हम चर्चा करेंगे PCOS और PCOD के लक्षण, कारण और जीवन शैली में बदलाव और उपचार से जुड़ी हुई। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी महिलाओं और युवतियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद शिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप हमें जानकारी देंगे। श्रोताओं, हम आपको ये भी बता दें कि इस विषय से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे नंबर आप नोट कर लीजिए 0141-2200-600, और दूसरा नंबर है हमारा 0141-2366-477। आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी आप हमें कॉल करें तो इस विषय से संबंधित ही सवाल पूछें, और जब आप कॉल करें तो रेडियो से थोड़ी सी दूरी आप बना लें ताकि आपकी आवाज़ को हम सही तरीके से सुन पाएं। तो डॉक्टर प्रियंका, जब हम बात करते हैं PCOD और PCOS की, तो इसके बारे में हम सब बहुत सुनते हैं और आजकल बहुत कॉमन भी होता जा रहा है ये शब्द सुनना। सामान्य भाषा में हम समझना चाहें तो ये क्या होता है?
3: देखिए, PCOD या PCOS अगर हम बात करें तो आजकल, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज होके PMOS हो गया है। जो PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की जिस बीमारी के बारे में हम जानते थे, उसका नाम चेंज होके आजकल PMOS यानी कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम ये हो गया है। तो अब ये बीमारी है क्या? पहले ये समझा जाता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवरी में गिठाने बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ ओवरी की बीमारी नहीं है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी हुई यह बीमारी है जिसमें हार्मोनल इम्बेलेंसेज होते हैं, उसके वजह से ओवरी में जो इमेच्योर एग्स होते हैं, सिस्ट नहीं बनती है बट मैं कहूँ पानी से भरी हुई छोटी छोटी सिस्ट नाम की पानी से भरी हुई गांठें हो जाती हैं जो फूटती नहीं है टाइम पर। तो इसकी वजह से एक विशेष सर्किल बन जाता है जिसमें हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से जो हर महीने एक अंडा फूटना चाहिए वो फूटता नहीं है, और उसकी वजह से शरीर पे बहुत सारे प्रभाव आते हैं।
0: तो आपने हमें सामान्य भाषा में समझा दिया और ये भी बता दिया कि आजकल हम इन्हें कंबाइंड करके PMOS नाम से जानते हैं, जिसे कंबाइंड रूप में हम देखते हैं। और एक ये कन्फ्यूज़न भी पहले रहता था कि PCOS और PCOD में हम कुछ डिफरेंस करें क्या, तो ऐसा कोई डिफरेंस अगर हम पहले के तरीके से भी देखते
3: जी,
0: हैं
3: जी, जी।
0: तो क्या कुछ आपको डिफरेंस इसमें फील होता है?
3: देखिए, डिफरेंस एज सच कुछ ऐसा है नहीं। जिसे पहले हम ये मानते थे कि ये कोई सिंड्रोम है, ये कोई सिंड्रोम नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बेलेंसेस के वजह से जो शरीर में बॉडी के ऊपर इफेक्ट आते हैं और अंडेदानी जो है उसके ऊपर असर आता है, इसके वजह से एक ये सिम्टम्स का एक विशेष सर्किल बन जाता है और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सिंड्रोम कहना इसके लिए गलत है, बट ये डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। और पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसमें जैसे कि वेट गेन हो गया या एक्सेसिव ओबेसिटी हो गई, उसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसमें इंसुलिन ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंसेज हो जाते हैं, जो मेल लाइक हार्मोन

0: यानी कि टेस्टोस्टेरॉन वो बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, एक विशेष साइकिल बन जाती है जिसमें वेट गेन होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो भी वेट गेन होता है. तो सारा एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है जिसे हम PMOS के नाम से आजकल जानते हैं.
1: तो PMOS के नाम से हम जानते हैं, और कुछ लक्षण जैसे आपने बताया कि
0: जी
1: हमें दिखने लगते हैं. और जब हम मेनस्ट्रुअल पैटर्न की बात करते हैं तो ये कितना इम्पॉर्टेंट बन जाता है? जैसे कुछ युवतियां होती हैं जिनके शुरुआती वर्ष होते हैं, पीरियड्स
0: यस
1: की स्टार्टिंग होती है, तब इरेगुलर होते हैं, तो कैसे पता
0: यस
1: चलेगा कि ये डिसऑर्डर है या नॉर्मल है सब
0: जी.
1: कुछ?
0: देखिए, जब सबसे पहले एक आजकल जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं हमारी, 9 से 11 साल की उम्र में आजकल मोस्टली देखा गया है कि मेनार्क यानी कि पीरियड स्टार्ट होते हैं. तो जब स्टार्टिंग में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो शुरू के 2 साल तक या 1-2 साल तक जो हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस होता है, यानी कि जो ब्रेन में जो एक सिस्टम है जिसकी वजह से जो हमारा ये प्रोसेस शुरू होता है, तो उसको मैच्योर होने में करीब 1 से 2 वर्ष का समय लगता है. तो स्टार्टिंग की जो साइकिल्स होती है उन्हें हम एनोविलेटरी साइकिल्स बोलते हैं, जिसमें जो अंडा है वो फूटता नहीं है. तो अंडा फूटता नहीं है तो वो महीने में जो या लेट फूटता है, तो जो महीने में एक हर महीने फूटना चाहिए वो वैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. तो स्टार्टिंग के 1-2 साल में या अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, 1 से 1.5 महीने तक नहीं आते, या 2 महीने, या कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है. उसके लिए घबराए नहीं, बस एक बार किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार ही दिखा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर बच्चियों को फिर बहुत ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव होता है पीरियड्स के टाइम पे, तो उसकी वजह से अनीमिया वगैरह हो सकता है पेशेंट्स को. तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं है. 2 साल तक लगता है मैच्योरेशन में, उसके बाद पीरियड्स रेगुलराइज हो जाते हैं.
1: और अगर हम एज ग्रुप की बात करें, PMOS जैसे आपने बताया कि
0: जी
1: इसे हम कमाइंडली जानते हैं, तो ये किस उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है या किस एज ग्रुप में ये समस्याएं हो सकती हैं?
0: देखिए, जनरली ये एडोलेसेंट्स में ज़्यादा कॉमन देखा गया है. एडोलेसेंट्स यानी कि जो टीनेज 11 साल से लेके 20, 22, 25 साल तक भी देखा जा रहा है आजकल. एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द लाइफस्टाइल. जो आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ स्ट्रेस फुल लाइफ है, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं, हमारा ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, जंक है उसमें, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसके वजह से ये सारा, जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये सारा जो इफेक्ट है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. तो मैक्सिमम टाइम यह देखा गया है कि अगर स्टार्टिंग के शुरू के इयर्स में बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो तो धीरे धीरे रेगुलर हो जाती है, लेकिन अगर किसी किसी को परसिस्ट भी कर सकती है, तो वो इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा होती है.
1: तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं, हमें ध्यान देना होता है. कुछ लक्षण होते हैं, कई कारण होते हैं इस चीज़ से जुड़े हुए. आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOD और PCOS के कारण, लक्षण और उपचार से जुड़ी हुई, और जीवन शैली किस तरीके से प्रभावित करती है ये भी हम जान रहे हैं. विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका गोयल. हमारी चर्चा डॉक्टर साहब से यूं ही जारी रहेगी, अभी हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए.
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ. सिंपली कॉल.
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान.
5: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम. डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर,
6: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान.
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर. कॉल 2707580 और 9829017147.
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज में आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOS और PCOD के लक्षण, कारण और जीवन शैली में बदलाव और उपचार से जुड़ी हुई. विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल. आपको बता दें कि आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01

0: अब डॉक्टर साहब, आपने हमें ये तो बताया था कि क्या क्या कैसे हम जान सकते हैं जब पीरियड्स की बात हुई तो कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और हो सकता है जब शुरुआती वक्त हो तब अधिक चिंतित होने की बात नहीं है कि हमारी जो नई नई बच्चियां हैं उनकी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं बड़ी उम्र की महिलाओं की या युवतियों की, तो उन्हें कब चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई दें तब सावधान हो जाना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो जो पीरियड्स का डीले होना, बेसिकली पीरियड्स का डीले होना इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात है इरेगुलर होना। इरेगुलर पीरियड्स में हमें ये नहीं, पेशेंट्स को समझ में नहीं आता है कि कब पीरियड शुरू होंगे। किसी किसी की साइकिल 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर साइकिल 1.5 महीने से, मतलब 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने तक अगर डीले होती है, नहीं आती है, तो एक बारी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि PCOS हो या PMOS जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है इसमें, पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि अंडा मैच्योर नहीं होता है। अंडा जो एक फर्टिलाइजेशन के लिए जो हर महीने रिलीज होता है, वो रिलीज नहीं होता है, तो पेशेंट्स को अपनी साइकिल का समझ में नहीं आता है कि कब अंडा रिलीज हो रहा है, कब हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उनको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि उनमें ये प्रॉब्लम हो कि अंडा मैच्योर नहीं हो रहा है और अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। इसके साथ ही जो, जैसा कि मैंने बताया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सेस ऑफ मेल लाइक हॉर्मोन्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे हम आम भाषा में अगर कहें तो हिर्सुटिज्म, जिसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ जाती है कई पेशेंट्स को फेस पे, या चिन, जो चिन लाइन होती है उस पे, या फिर एक्ने हो जाते हैं, या फिर हेयर लॉस होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बेटर है कि टाइम से डॉक्टर की सलाह लें। और एक और बात है कि सिर्फ PCOS ही नहीं, इसमें कई बार एसोसिएटेड थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ भी एक कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे हमें गायनेकोलॉजिस्ट प्लस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिलके अगर पेशेंट्स का इस मामले में कंसल्टेशन करें तो बेटर रहता है।
0: तो अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जितना जल्दी हमें समस्या होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उतना आसान समाधान होता है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बोला ना कि पेशेंट्स क्या करते हैं, टाइम से परेशान होते रहते हैं, 1.5 महीने तक साइकिल, कई कई बार तो होता है कि 3-3, 4-4 महीने तक भी उनको ऐसे फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो हमारा फीमेल हार्मोन है, वो तो कंटिन्यूस बनता रहेगा, तो उसके और लेकिन अंडा जब फूटता नहीं है, तो जो एक दूसरा हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बोलते हैं, वो सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्टिवेट होना शुरू करता है, तो वो बनता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि परत मोटी होती जाती है बच्चेदानी के अंदर। तो इस वजह से जब 3-4 महीने में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो वो परत बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब पीरियड आता है तो हैवी होता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप पहले ही डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि अननेसेसरी वो एक कंबरसम प्रॉब्लम हो सकती है। एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी यहां पर, ऐसे पेशेंट्स में आजकल यह भी देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर PCOS होता है, उनमें एक एंडोमेट्रियल कैंसर नाम की जो कैंसर है, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, वो यंग पेशेंट्स में भी आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। पेशेंट्स जाते हैं इस प्रॉब्लम से ग्रसित होकर डॉक्टर के पास कि हमें बच्चा नहीं लग रहा है, और पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, फिर देखते हैं कि भाई बच्चेदानी के जो अंदर की परत है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और फिर जब उसकी जाँच करी जाती है, ऐसे में यह भी बहुत ज़रूरी है, मैं सबको बताना चाहूँगी कि ऐसे में जो अंदर बच्चेदानी की जो परत जब मोटी होती है, तो उसकी जांच बहुत ज्यादा, बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल यह भी देखा गया है कि यंग, पहले यह बीमारी हम मानते थे कि मेनोपॉज के बाद की बीमारी है, किसी को अगर बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है तो वो मेनोपॉज के बाद होता है, पर ऐसा नहीं है, आजकल यंग पेशेंट्स में भी, इनफैक्ट 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी बच्चेदानी का कैंसर देखा गया है। तो ऐसे में बिल्कुल भी डीले ना करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, डीले होकर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो टाइम पर ही डॉक्टर से कंसल्ट करें।
0: तो डॉक्टर प्रियंका ने बहुत ही अच्छी

0: बात बताई, कई बार हमारी आधी आबादी बस काम में उलझकर और अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाती है, सब पे ध्यान देते हुए। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगी तभी तो आप अपनों का ध्यान रख पाएंगी। अभी एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका सवाल हम लेते हैं। हेलो
1: नमस्कार, मैं जयपुर से प्रमोद बोल रहा हूँ।
0: जी। नमस्कार सर।
1: मेरा निवेदन ये था कि अगर ये प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल से ही अगर ये एजुकेशन का पार्ट बना दिया जाए, क्योंकि आजकल की बेटियां जो है मान लीजिए वो कह नहीं पाती या बता नहीं पाती है, तो वहाँ पर जागरूक अभियान, मेरे निवेदन है कि ऐसा अभियान हो, जागरूक अभियान, जो जो जहाँ आपने कहा लाइफ स्टाइल से ये पूरा ये इससे संबंध है, तो प्लीज आप थोड़ा बताएं कि अगर ऐसा हो तो कितना बेनिफिशियल होगा।
2: आपने ये बहुत सही सुझाव दिया है प्रमोद जी। एक्चुअली देखिए, इस बिल्कुल सही बात है कि करिकुलम में ही, अगर स्टार्टिंग में ही बच्चियों के बुक्स में अगर इस बात का जिक्र हो जाए, उनको इस बात की एजुकेशन दी जाए, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टेल द प्रॉब्लम टू द पेरेंट्स। बट ये तो हमारा, वैसे आजकल मैंने देखा है CBSE की कई किताबों में ये है भी शामिल, और काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन नॉलेज हम प्रोवाइड, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चियों को, तो इस पे तो मेरा बस है नहीं। वो तो करिकुलम जो सेट करते हैं वो लोग करेंगे। बट हाँ, मैंने ये भी है कि आजकल रेगुलर हमारे, जैसे हमारे हॉस्पिटल से ही जयपुर स्वास्थ्य चर्चा नाम का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम टाइम टू टाइम स्कूल्स में और कॉलेजेस में हम जाते हैं और लड़कियों को, टीचर्स को, सबको जागरूक करते हैं, और विभिन्न एक पैनल किया जाता है विभिन्न डॉक्टर्स के द्वारा, जिसके अंदर हम टाइम टू टाइम उन लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो कॉमन डिजीजेज हैं उनके बारे में। तो इस तरह से भी एक जरिया है लोगों को जागरूक करने का, जिसमें हम बच्चियों को प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं।
0: तो बच्चियों को अवेयर करने के लिए मुझे लगता है कि साथ में डॉक्टर साहब ये भी जरूरी है कि हमारे घर में एक ऐसा माहौल बनाया
2: बिल्कुल
0: जाए
2: बिल्कुल
0: जहां पर बेझिझक अपनी बात कह
2: एब्सोल्युटली
0: सके।
2: एब्सोल्युटली ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आजकल बच्चियां फ्रैंक हैं भी स्कूल में भी और घर पे भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की दो डॉटर्स हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी फ्रैंक विद द पेरेंट्स। तो बहुत जरूरी है कि एक फ्रेंडली रिलेशन हो, सो दैट यू नो गर्ल्स अपनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली डिस्कस कर सके पेरेंट्स के साथ।
0: स्कूल के साथ साथ हम घर से भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे आज हमारा कार्यक्रम है तो इसे भी जो बच्चियाँ, युवतियाँ या जो माएँ सुन रही हैं, और इनफैक्ट जो पिता भी सुन रहे हैं, जैसा भी एक कॉल हमें आया था,
2: यस यस
0: तो वो भी
2: डेफिनेटली
0: जागरूक कर सकते
2: जी
0: हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो अब जब हम चर्चा कर रहे हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई भी जैसे बात आती है, तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि कर ही लेने चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं और इन बीमारियों से बचना चाहते
2: बिल्कुल
0: हैं?
2: देखिए, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आती है PCOS की प्रॉब्लम या मुझे लगता है रेगुलर मेंसेस की, तो मैं सबसे पहले जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें मेरी फर्स्ट लाइन होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिफोर राइटिंग एनी मेडिकेशन मैं सबसे पहली जो एक लाइन लिखती हूँ वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि आजकल इतना ज़्यादा बच्चियाँ कई बार एडोलिसेंट एज में स्कूल जैसे छोड़ के पढ़ने आती हैं, दूसरे शहरों में रहने आती हैं, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। यू नो उनकी ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हॉस्टल का, मेस का खाना या बाहर टिफिन का। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बाहर का जंक फूड, आजकल अपन को सबको पता है कि फूड में कितना एडल्ट्रेटेड फूड है, हम लोग प्रोसेस्ड फूड कितना ज़्यादा कंजम्पशन है। तो दूसरा, वेट गेन एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, वेट गेन, BMI जिसे हम कहते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स, सबका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। फिर स्लीप पैटर्न्स हैं, तो स्लीप पैटर्न्स ऑलमोस्ट सबके डिस्टर्ब रहते हैं, लेट तक जागना, रात में लेट सोएंगे, फिर सुबह लेट उठेंगे, तो वो जो खाने का एक यू नो सारा पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो इसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर लें, जैसे हम टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, जो मील्स हैं हमारी, जो तीन मेजर मील्स हैं वो अगर हम शामिल करें, बीच में फ्रूट्स का इनकॉर्पोरेशन है या हम नट्स का कंजम्पशन है, इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड हम ये सब कंज्यूम करें, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का, डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, जिमिंग है, योगा है, आजकल तो योगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो योगा है, ये सब अगर हम हमारी आम शैली में, हमारे जनजीवन में अगर हम इन सब चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। इससे मैंने जैसे बोला ना, एक विशियस पैटर्न शुरू हो जाता है, तो वेट गेन होता है, उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगेन वेट गेन हो जाता है, तो ये सब फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा, वेट कम होगा, ऑटोमेटिकली पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, कोई बिना मेडिकेशन लिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
0: तो

0: आपकी जीवन शैली कैसी है ये भी प्रभावित करती है आपके स्वास्थ्य को। अपनी जीवन शैली को अगर आप अच्छा करते हैं और तो आप हेल्दी राह पे भी चल सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी महिलाओं और युवतियों से जुड़ा हुआ है, PCOS और PCOD के लक्षण, कारण, जीवन शैली में बदलाव और उपचार से जुड़ी हुई। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल। हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, अभी हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आंखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलता पूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
2: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
0: श्रोताओं, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज में आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOS और PCOD से जुड़ी हुई। विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल। हमने जाना कि इस बीमारी के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं। जब लक्षण दिखाई देते हैं डॉक्टर साहब हमें, तो उसके बाद हम चिकित्सक के पास जाते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं चिकित्सक के पास जाने के बाद?
3: जी, एक बार जब पेशेंट हमारे पास आता है विद द कंप्लेंट ऑफ इरेगुलर मेंसेस, तो हम उसके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें, जिसमें थायराइड होता है, प्रोलैक्टिन होता है, इंसुलिन की एक लेवल की जांच होती है, शुगर की जांच होती है। उसके अलावा एक सोनोग्राफी हम कराते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो अंडेदानी है उसका बल्क, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, कि वो अगर 10 cc से ज़्यादा होता है तो उसमें जनरली PCOS के चांसेस होते हैं। बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, वो कितनी मोटी है, लाइनिंग कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर मेडिकेशंस दी जाती है।
0: तो परीक्षण करवाया जाता है और उसके बाद मेडिसिन दी जाती है।
3: जी।
0: तो जब हम बात करते हैं उपचार की, तो ये किस तरीके से शुरू होता है, कितने समय का होता है और किन बातों का ध्यान रखना होता है?
3: देखिए, मेडिकेशन जब ट्रीटमेंट अगर शुरू होता है, तो जैसे मैंने पहले बताया, मेरा प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट्स विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रीटमेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास कई तरह की ड्रग्स या मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें हार्मोनल मेडिकेशन और नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस हैं। तो अगर जांचों के आधार पे, जैसे कि कई बार थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, उससे भी एसोसिएटेड एनोविलेशन हो सकता है, या प्रोलैक्टिन बढ़ा हो सकता है, उसकी वजह से भी एनोविलेशन होता है, तो अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। दूसरी बात, हार्मोनल टैबलेट्स आती हैं, जिसमें हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की कंबाइंड पिल्स आती हैं, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की पिल्स भी आती हैं, तो वो हम एक साइक्लिक पैटर्न में दवाइयाँ शुरू करते हैं, जिसमें 21 दिन की, 25 दिन की अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करके वो मेडिकेशन दी जाती हैं। यह ट्रीटमेंट 3 months, 6 months, अप टू इनफैक्ट मैक्सिमम 1 year तक भी कई पेशेंट्स को देना पड़ जाता है।
0: तो पेशेंट की स्थिति कैसी है, या वो अभी किस स्तर पर है PCOD और PCOS के, उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज किया जाता है और उसी तरीके से प्रणाली होती है जो पूरी बनी हुई होती है।
3: yes.
0: तो उनका उपचार हो जाता है।
3: जी।
0: तो जब उपचार की बात हम करते हैं, तो क्या हम इसे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं या पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं?
3: देखिए, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं यह कहना तो अपने आप में गलत होगा। मेन प्रॉब्लम इसमें, देखिए, मैंने जैसे बोला कि इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है आगे जाके, जब तक अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रही है, तब तक तो कुछ इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो उनमें अगर हम देखें, तो उसमें कई बार हमें अंडे बनने की दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो उसमें कई बार मेडिकेशंस दिए जाते हैं, मेडिकेशंस जिसमें ओरल, अगर मतलब टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट से भी अगर नहीं पार पड़ती है, तो फिर इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो वो है एक तो अंडे बनने के लिए। दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जो बिल्कुल जड़ से ख़त्म की जाए। इसमें हम 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं देते हैं। बीच बीच में, यू नो, 3 महीने के लिए दे दी, फिर एक पीरियड्स रेगुलर हो गए, गैप दे दिया। तो उससे कंटिन्यूअस दवाइयां लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी होनी है तो उसका इलाज, जैसे कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये नहीं कि हम तो 35 साल के बाद, आजकल बहुत देखा गया है बिकॉज ऑफ यू नो प्रोफेशन, एजुकेशन, उन सब की वजह से पेशेंट

0: सोचते हैं कि अरे अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम नहीं करेंगे। तो मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि हर चीज का एक टाइम होता है, शादी का एक टाइम है, प्रेगनेंसी प्लान करने का एक टाइम है, सारी चीजें अगर समय पे होती हैं तो वो अच्छे से हम इनफैक्ट उसको हम इंजॉय भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन से भी हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पहले से है तो आप टाइमली, जैसे शादी हो गई तो बहुत ज्यादा वेट ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और आपको पता है कि आपको पीसीओएस है तो आप जल्दी थोड़ा सा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू कर दें, और अगर नहीं होती है तो टाइम से उस चीज़ का इलाज लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्लान करते ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। उसमें हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ दवाइयों का सहारा लेना पड़े। तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका इलाज हमने 3 महीने दवाई दे दी और बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन यू कैन टेक हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, उन चीज़ों से पीरियड्स रेगुलर किए जा सकते हैं।
1: तो आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जब लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और कुछ बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हम उनका कॉल लेते हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो हेलो जी, नमस्कार सर,
2: हाँ
1: आपका
2: नमस्कार
1: नाम?
2: जी।
1: जी जी सर,
2: मैडम नमस्कार आपको।
0: नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ
2: मैं
0: जी।
2: ऐसा पूछ रहा हूँ कि किसी महिला में महावारी के बारे में परेशानी आ रही, किसी को 10 दिन से 15 दिन जा जाती, किसी एक महीने में जाती, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
0: देखिए, इसमें अगर किसी महिला को यह पहली बार अगर हो रहा है कि 10-15 दिन में से आ रही है और लगातार चल रही है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस चीज़ को सिर्फ फ़ोन पे बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। जब तक पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री नहीं पता हो, पेशेंट्स का एग्जामिनेशन होता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस चीज़ के कई रीजंस हो सकते हैं डिलेड और इरेगुलर मेंसेस के लिए, और कई तरह के टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। तो वो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसा हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है।
1: तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पीसीओडी और पीसीओएस से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है हमारे 01412200600, और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। विषय पर चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी, अभी हम रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
6: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर,
7: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान।
6: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
1: श्रोताओं, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज में आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOS और PCOD से जुड़ी हुई। चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका गोयल। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे आपने हमें इनके कारण के बारे में भी बताया, लक्षण के बारे में भी बताया, कैसे डायग्नोस होता है और उपचार कैसे चलता है ये भी आपने बताया। अब किसी के परिवार में इससे जुड़ी हुई फैमिली हिस्ट्री है,
0: yes.
1: तो क्या इसका रिस्क ज़्यादा होता है या ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है?
0: यस डेफिनेटली, इसमें जैसे मैंने बोला, अगर पेशेंट जो बच्चियां हैं, अगर उनकी मम्मी को ये प्रॉब्लम रही है पहले, या फिर उसकी बहन को भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि पेशेंट को भी प्रॉब्लम फैमिली हिस्ट्री में का इसमें रीज़न रोल हो सकता है। और दूसरा, इसके बचाव के लिए तो अगेन एंड अगेन सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कि अगर आपको पता है कि ऐसी फैमिली हिस्ट्री है तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें अपनी वेट गेन को लेके, अपना स्लीप पैटर्न्स को लेके, ईटिंग हैबिट्स को लेके, तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है, बट 100% इफेक्टिव होगा ये नहीं बोल सकते।
1: तो कितने समय की नींद

0: हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
1: नींद तो देखिए बहुत ही आजकल ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 8 आवर्स की स्लीप इज शुड साउंड स्लीप। 8 आवर्स की स्लीप में भी ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो और फिर नींद लग रही है। 8 आवर्स की साउंड स्लीप एटलीस्ट होनी चाहिए। फॉर अ स्टूडेंट मैं सोच समझ सकती हूँ कि पढ़ाई की वजह से नहीं पॉसिबल होता है, हो पाता है। तो हमारे टाइम पे तो हमारे पेरेंट्स बोला करते थे कि अगर आप 6 आवर्स सो रहे हो तो उतना भी सफिशियंट है, बट वो 6 आवर्स बिल्कुल एकदम साउंड स्लीप होना चाहिए, जिसमें आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना एक हमारा जो रैम पैटर्न होता है तो जिसमें वो रैम 1 और रैम 2, तो उसमें वो उस तरह की स्लीप होनी चाहिए।
0: तो कम से कम 6 घंटे की नींद और ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल हमसे दूर हो, डिजिटल डिटॉक्स पूरा रहे हमारे आसपास। अभी एक श्रोता जुड़े हैं, पहले हम उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो,
2: नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग मैम। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड आई हैव ए लिटिल बेबी गर्ल।
1: ओके,
2: बट यूजुअली मी एंड माय वाइफ usually in ELD we can say that we have drink alcohol and also cigarette. So in my first baby my wife also diagnosed with PCOD. But now we want to try to second baby. So that and how we can remove this inhibit,
1: हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। पीसीओडी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि पीसीओडी कोई ऐसी प्रॉब्लम कह लें या कोई ऐसी, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत कि एक बारी कि हो गया तो भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, जैसे ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, तो ऐसी कोई भयंकर बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से पता नहीं बहुत ही कुछ हो जाएगा। पर हाँ, ये भी बात समझना ज़रूरी है कि PCOS अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हो सकता है कि पहले ठीक आ गया है, इसका इलाज हो जाए, पीरियड्स कुछ टाइम के लिए रेगुलर हो जाएं, फिर इरेगुलर हो सकते हैं। तो इस चीज़, अब आप अगर सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बोला, बेटर है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपनी इम्प्रूव करके आप पहले नेचुरली ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।
0: तो जैसा सवाल था उसका जवाब भी आपने बताया, और साथ में आपने पहले भी कहा था कि जीवन शैली में बदलाव की बहुत ज़रूरत अब इस समय आ चुकी है। लेकिन जो महिलाएं PCOD और PCOS जैसी समस्याओं से जूझ रही होती हैं तो उस समय वो मेंटली भी बहुत परेशान हो जाती हैं। जैसे एक तो हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा होता है तो कुछ एक अलग तरीके की फीलिंग आती है जिसे हम समझ सकते हैं, और इसके बाद हमारे आसपास का माहौल भी हमें थोड़ा अलग फील होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, एक्चुअली PCOS, जैसा मैंने बताया, इट हैज़ बीन सीन कि इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो। एक तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पेशेंट को अपनी साइकिल का पता नहीं होता है, तो कभी भी हो जाएगा, पेशेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तक देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में। दूसरी बात, बॉडी फिजिकल जो चेंजेस होते हैं जिनमें ओबेसिटी, जो अपेयरेंस में जैसे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स, फेशियल हेयर हो जाते हैं, ठीक है, एकैंथोसिस निग्रिकेंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें नेक पे पैचेस हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। तो ये सब चीज़ें मिलके ना पेशेंट को, क्योंकि उसकी फिजिकल अपेयरेंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्ल्स के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी रहता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कई बार देखा गया है कि जो बच्चियां हैं, जो पेशेंट्स यंग लड़कियां होती हैं, उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, वेट ना करें कि अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। अगर ऐसा कुछ है तो इंस्टेड ऑफ कोपिंग, लाइक अगेन एंड अगेन फाइटिंग विद द मेंटल प्रॉब्लम्स, गो एंड टेक हेल्प ऑफ सम स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट से, या कई बार हो सकता है कि साइकाइट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तो मेडिटेशन, योगा, अगेन एंड अगेन लाइफ स्टाइल, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये आप हेल्प ले सकते हैं, एंड विद हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ।
0: तो अभी एक श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। हेलो
3: बहन जी, आपको डॉक्टर साहब को सहप्रेम नमस्कार, प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं।
3: सबसे पहले तो

0: आपको जहाँ तक रेडियो की आवाज सुनने, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: मैम ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी को ये एनएमए मतलब महामारी हो जाती है, इसमें खान पान का और एक मतलब जैसे रात को देर से सोना, मोबाइल का यूज करना, सुबह लेट तक उठना, थोड़ा इनका कितना मतलब रोल है, थोड़ा सा ये बताए।
1: देखिए, मैं वही बात फिर से वही दोहरा रही हूँ। इन सब चीज़ों का सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखे गए हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, जिसमें मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, हम अगर बस में बैठे हैं, हम इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि सड़क पे चल रहे हैं तो भी एक हाथ में मोबाइल है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें, आपको नहीं पता आपके आसपास क्या हो रहा है। तो मोबाइल, आप हम बेड पे सो रहे हैं, हमारे बगल में तकिए के पास में मोबाइल रखा है, तो इन सब चीज़ों से रेडिएशंस भी रिलीज होते हैं। दूसरा, आप पूरा टाइम मोबाइल मोबाइल में देखते रहते हैं, तो उसका हमारी मेंटल कंडीशन पे, हमारी पूरे फिजिकल बॉडी पे, उस पर बहुत ज़्यादा असर आता है। खान पान, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, जिसमें पैक्ड फूड आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पाम ऑयल का एक्सेसिव उपयोग होता है, तो इन सब का हमारे शरीर पे, इनफैक्ट नॉट ओनली ऑन द यूट्रस या ओवरीज, सारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इन सब की वजह से देखे गए हैं, सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पे इसका असर आता है। कई पेशेंट्स जो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो खाना जो एक ब्रेकफास्ट है, एक लंच है, डिनर है, तो वो सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स हैज बीन सीन, लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार मोशन होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन का होना, भूख नहीं लगना, फिर भूख लगती है तो एकदम से बिंज ईटिंग करना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमनली हो सकती हैं, और एक शरीर, पूरे ही शरीर पे इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है।
2: तो शरीर पे दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और कुछ चेंजेस हैं वो सभी को करने
1: जी
2: होंगे। अब
1: बिल्कुल
2: जैसे अब हमारे बात होती है डाइट से जुड़ी हुई, तो कुछ अगर ऐसा डाइट चार्ट नहीं बना पाती हैं जो महिलाएं हैं जो इस समय सुन रही हैं, और
1: जी
2: वो थोड़ा बहुत चाहती हैं कि उनके जीवन में भी सुधार आ जाए और इस तरीके की जो समस्याएँ हैं उनका वो सामना कर सकें और स्वस्थ रहें, तो कुछ ऐसी बेसिक सी खाने की चीज़ आप बता सकेंगे जो डेली रूटीन में वो शामिल करें?
1: देखिए, डेली रूटीन में शामिल, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी, सारी फीमेल्स को, फीमेल्स क्या है, सबका ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं। ऐसे में फीमेल्स को एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है, विच इंक्लूड्स मेजर थ्री मील्स, जिसमें ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब महिलाएं क्या करती हैं, घर के कामों में इतनी बिजी होती है कि उनका ब्रेकफास्ट ही 12 बजे होता है, तो ब्रेकफास्ट 12 बजे होगा तो लंच कब होगा, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे ब्रेकफास्ट, उसके बाद टाइम पे लंच और टाइम पे डिनर, ये तीन तो मेजर मील्स होनी ही चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स का कंजम्पशन, एक आपका बीच में फ्रूट्स की जो डाइट है, फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए, जिसमें हाई फाइबर डाइट शामिल होनी चाहिए, जैसे सैलड्स हो जाए लंच के साथ, आप सैलड्स का कंजम्पशन कर सकते हैं, कुछ बेसिक नट्स जिससे विटामिन B12, क्यों वेजिटेरियन फीमेल्स अगर हैं तो उनमें विटामिन B12 वगैरह का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है, तो नट्स शामिल कर सकती हैं। कैल्शियम के लिए दूध दही का इस्तेमाल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से एक बेसिक डाइट हम मेंटेन कर सकते हैं।
2: तो बेसिक डाइट को आपको मेंटेन करना होगा, थोड़ा समय आपको खुद के लिए भी निकालना होगा, क्योंकि आपकी सेहत पूरे परिवार के लिए भी ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है, जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी अच्छा फील करेंगी, और आपका स्वस्थ रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOS और PCOD से जुड़ी हुई, विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका गोयल। यूं ही हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, अभी रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए।
3: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव।
4: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
3: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज में आज हम चर्चा कर रहे हैं PCOD और PCOS के लक्षण, कारण और उपचार से जुड़ी हुई। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल। तो हमने PCOD और PCOS के बारे में भी जाना, इनके लक्षणों के बारे में जाना, कारण के बारे में जाना, डायग्नोस के बारे में जाना, और ये भी जाना कि उपचार किस तरीके से होता है, जैसा आपने हमें बताया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो युवतियाँ और जो महिलाएँ हमें सुन रही हैं,

0: ज़रूर अपने अंदर लेकर आएं। और एक टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप मेरे हिसाब से वो होना चाहिए हर पेशेंट, हर फीमेल को एक ईयरली चेकअप, एनुअल चेकअप हम जिसे बोलते हैं, वो ज़रूर करवाना चाहिए, जिसमें कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट शामिल होने चाहिए और उसमें एक सोनोग्राफी, जिसमें कि आपका बेसिक ये पता चल जाए कि हाँ अंदर सब ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि एक बेसिक डाइट, जैसे कि मैंने बोला, वो होनी चाहिए। एक बेसिक रूटीन टेस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पैप्समेयर, जिसमें जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग यानी कि जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है उसकी एक जांच, जो हर एक बार आपने करा ली तो 3 साल तक आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक वो उसमें ये भी पता चलता है कि बच्चेदानी में अंदर कोई छाला, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के चेकअप के साथ ही पता चलता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि पेशेंट से ब्लड टेस्ट करा के रह जाते हैं और हमने तो एक रूटीन हेल्थ चेकअप करा लिया, ऐसा नहीं है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना एक रूटीन हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, एनुअल चेकअप कराएं, एनुअल मैमोग्राफी जिसमें ब्रेस्ट की जो सोनोग्राफी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि आजकल यंग पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर नाम की जो बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो और सबसे एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच इंक्लूड्स डाइट एंड एक्सरसाइज। तो घर के कामों में ऐसा मत सोचे कि मैं तो घर में सारा दिन चलती फिरती रहती हूँ तो मैं तो बहुत एक्सरसाइज, मेरी तो बहुत वॉकिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग मॉर्निंग, स्पेशली मॉर्निंग वॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो ऐसा करने से आप PCOS से कई हद तक बचाव कर सकते हैं।
1: तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी और साथ ही ये भी आपने प्रेरित किया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और जब आप अपने बारे में सोचेंगी तो हेल्दी ज़रूर रहेंगी आप। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी सलाह को आप ज़रूर माने। आज कार्यक्रम में हमने चर्चा की PCOD और PCOS के कारण, लक्षण और उपचार से जुड़ी हुई। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका गोयल, आप कार्यक्रम में हमारे साथ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।
0: थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद
1: जी। तो आज हमारे डॉक्टर वीरेंद्र लीजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज़ में इतना ही। आपको बता दें कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र कुमार मीणा।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज के प्रायोजक थे डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
4: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।

0: 101.2 FM। भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: सुजयपुर, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं, और अगर हम स्माइल करते हैं तो हमारी स्माइल हमारे आसपास पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो आप स्माइल करते रहिए। और अब वीकेंड भी आने वाला है, तो इसके बारे में कुछ आपने सोचा है क्या? वैसे सोचा तो होगा कि इस बार का वीकेंड हमारे देश के नाम ही रहने वाला है। हमारे देश के लिए कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे से संकल्प हम ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे। आज की वीकेंड पे आप कौन से संकल्प लें, कौन से छोटे छोटे से काम करें, और साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो आज प्रोग्राम में आपके साथ होंगी। अभी हम सुनते हैं ये ट्रैक साथ में और गुनगुनाते भी हैं। सुनते रहिए हेलो जयपुर, ओनली ऑन 101.2 FM।

हेलो जयपुर, सुन रहे हैं आप। और आज आपको बताएंगे एक प्लेबैक सिंगर के बारे में जिनका है बर्थडे। गीत भी कुछ होंगे उनके गाए हुए, साथ ही बहुत कुछ है आज कार्यक्रम में आपके लिए। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सुबह के 10:10 होने वाले हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे विश्व दर्पण, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो इसके लिए आपको करनी है बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथॉन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य वर्धन के विषय पर आयोजित भारत इसराइल हैकाथॉन को दोनों देशों के युवा नव प्रवर्तकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करता है। इस हैकाथॉन में दोनों देशों के 1300 प्रतिभागियों ने 14 समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। इसराइल के समाधानों में व्हीलचेयर पर लगाए जाने वाला अंग गतिशीलता तंत्र शामिल है। भारत के समाधानों में एक ऐसा तंत्र शामिल है जो घायलों के अंगों की गति का आकलन करने और स्वचालित गति विश्लेषण का उपयोग करता है। इस पहल ने भारत इसराइल के बीच आपसी संबंधों को

0: मजबूत किया है। भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
1: राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानव रहित ड्रोन और उसके पुर्जों के आयात पर 100% तक का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व वाले उद्योग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अमेरिका की निर्भरता को कम करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नए उपायों में कुछ मानव रहित विमान प्रणालियों, विशेष रूप से 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े ड्रोन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील मानी जाने वाली क्षमताओं से लैस प्रणालियों पर 100% टैरिफ शामिल है। नई नीति के अंतर्गत छोटे ड्रोनों पर 25% की कम टैरिफ दर लागू होगी। चीन वर्तमान में वैश्विक ड्रोन बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में स्थापित चीन के ड्रोन निर्माता DJI ने हाल के वर्षों में वैश्विक ड्रोन बाजार के 2/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। ये द्वीप समूह रूस के नियंत्रण में है और जापान भी इस पर अपना दावा करता है। उनके इस कदम का टोक्यो ने विरोध जताया है। एक रिपोर्ट।
2: जापान कुरिल द्वीप समूह के 4 सबसे दक्षिणी द्वीपों पर अपना अधिकार जताता है। इन द्वीपों को जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने इन द्वीपों को जापान से छीन लिया था। इस क्षेत्रीय विवाद के कारण दोनों देश युद्धकालीन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयासों से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हाल के वर्षों में मॉस्को ने कुरिल द्वीप समूह पर अपनी सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर उसके दृढ़ रवैये को दर्शाता है। जापान के विदेश मंत्री तोशी मत्सु मोतोगी ने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन की यूतोरूप यात्रा का कड़ा विरोध करते हैं, जिसे टोक्यो यूतोराफू कहता है। वर्ष 2021 में जब तत्कालीन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टीन ने यूतोरूप का दौरा किया था, तब जापान ने भी विरोध दर्ज कराया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वॉशिंगटन का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है।
3: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इंग्लैंड में लुइस शहर के पास एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन में लगभग 150 यात्री सवार थे और ये लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ईस्टबोर्न जा रही थी। सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल कर्मी, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सहित 3 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने

0: मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्रिटेन इस स्तर की गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। दुकानों और दफ्तरों के बाहर एयर कंडीशनिंग का उपयोग न के बराबर ही होता है। उधर जंगल की आग इस सप्ताह दक्षिणी इंग्लैंड के न्यू फॉरेस्ट में लगातार फैल रही है। इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में 1,000 से अधिक जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेपाल के रोल्पा जिले में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हैं। ये घटना थ्वांग ग्रामीण नगरपालिका के कोटलबारा गांव में हुई, जो राजधानी काठमांडू से करीब 450 किलोमीटर पश्चिम में है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से 7 शव बरामद किए गए हैं। घटना में घायल 2 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 3 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता की एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियाटेक ने इस जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। उधर पुरुष सिंगल्स में अमरीका के बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ 5वीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने अपने करियर का दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलो न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सो जयपुर, कल है स्वतंत्रता दिवस। हम सभी के लिए बहुत ही खास मौका, एक ऐसा मौका जो हमें भर देता है देशभक्ति की भावना से, एक ऐसा दिन जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। और इस दिन को हम बहुत ही खास भी बना सकते हैं। वो खास हम इस तरीके से बना सकते हैं कि कुछ हम ऐसा करें, कुछ ऐसे संकल्प लें जिन्हें हम फॉलो करें, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। और एक खास दिन को जब हम ऐसा संकल्प लेंगे तो हमें याद भी रहेगा, तो इस वीकेंड को आप खास बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि जैसा ये बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में आप पौधारोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो पर्यावरण के लिए और देश के लिए आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको सिर्फ उस पेड़ को या पौधे को लगाना ही नहीं है, बल्कि उसकी केयर भी करनी है, क्योंकि बिना केयर के वो मुरझा भी सकता है। लेकिन बारिश का मौसम थोड़ा अनुकूल होता है, क्योंकि पानी आ ही जाता है जब बूंदें धरती को छूती हैं बारिश की, तो थोड़ा सा अनुकूल रहता है। और इस समय में अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। पर्यावरण के लिए भी अगर हम ध्यान देते हैं तो हम हमारे देशवासियों की भी हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीकेंड को आप कुछ छोटे छोटे कामों की लिस्ट बना सकते हैं, जिन्हें करने के बाद आप प्राउड फील करेंगे, और हमेशा आपको उन बातों को फॉलो करना है। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक संकल्प लें, जैसे हम वीडियोस तो बनाते ही हैं, सेल्फी भी लेते ही हैं, तो हम इस बात का संकल्प भी लें कि इस वीकेंड पे हम हमारे देश का नाम लेते हुए ये कि कभी भी हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक बैन है, लेकिन उसके बाद भी कभी ना कभी हमारा मन कर जाता है ना कि क्या

सूखा हुआ हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो एक ऐसा काम है जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और एक ख़ास दिन पर ख़ास काम हम करेंगे और हमेशा इस बात को याद रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बातें यूं ही चलती रहेंगी आपकी और हमारी। अभी आ रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जिसे हम साथ में सुनेंगे। सुनते रहिए हेलो जयपुर, ओनली ऑन 101.2 FM।

सो जयपुर हर वीकेंड को हम सोचते हैं कि क्या करना है, लेकिन चलिए इस वीकेंड पे हम सोचेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। इस वीकेंड को थोड़ा अलग बनाते हैं और थोड़ा सा समय ये सोचने के लिए लगाते हैं कि कुछ ऐसा क्या है जो हम करते हैं लेकिन गलत है, हमें पता भी होता है लेकिन सोचते हैं कभी कभी से क्या होता है। तो इस वीकेंड पे हमें ये संकल्प भी लेना है कि कभी हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, उन्हें हम फॉलो करते रहेंगे। और हमारे आसपास के वातावरण में जब हम देखते हैं तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है, जब सब कुछ स्वच्छ होता है कितना मन खुश हो जाता है, और बारिश के मौसम में तो क्या ही कहें, जब आसपास स्वच्छता दिखाई देती है तो मन भी लगता है कि किसी फ्लावर की तरह बारिश को देखकर खुश हो रहा है। लेकिन हमारी आदत कभी कभी बदल नहीं पाती है। अगर हमें डस्टबिन नहीं मिलता है तो हमारे आसपास जो जगह मिलती है उस जगह पे हम कभी कभी कचरा, कोई रैपर या कुछ ऐसा सामान जिसकी हमें ज़रूरत नहीं हो तो उसे हम डाल देते हैं, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो सुंदर सी जगह थी उसकी जगह एक ऐसी जगह ने ले ली है जहाँ पर कचरा हमें दिखाई दे रहा है और जो देखने में उतना सुंदर भी नहीं लग रहा है। तो इस बार आपको वीकेंड पे लेना है अपना एक वीडियो, एक सेल्फी, जिसे आपको अपने साथियों के साथ भी शेयर करनी है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करनी है, और आप

जहाँ काम करते हैं वहाँ के साथियों के साथ भी शेयर करनी है। और इसमें आप संकल्प लेंगे कि आप कभी भी डस्टबिन के बिना किसी भी स्थान पर कचरा नहीं फेंकेंगे। अब सेल्फी और वीडियो लेने की और भेजने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है क्योंकि जब हम ऐसी सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो हमें याद रहेगा कि कभी भी हमारा मन अगर बदलता है या हमसे कहता है कि एक बार में क्या होता है, आगे से फॉलो करेंगे संकल्प को, तो हमें वो वीडियो, हमारी सेल्फी याद आ जाएगी जिसमें हम बता रहे हैं कि हम अब क्या नहीं करने वाले हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा काम करेंगे अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी। आज एक सेलिब्रिटी का बर्थडे भी है जिनकी आवाज़ बहुत खास है, उनसे जुड़ी बातें भी हम करेंगे, लेकिन अभी तो ये सॉन्ग सुनते हैं हम उनकी ही आवाज़ में। गेस करिए कौन है वो।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

हेलो जयपुर, सुन रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा, और आज बर्थडे है एक ऐसी प्लेबैक सिंगर का जो कभी अपनी एनर्जी से हमें झूमने पर मजबूर कर देती है, तो कभी अपनी मधुर आवाज़ से दिल को छू लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की। एक ऐसी उम्र जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने की शुरुआत कर रहे होते हैं, उस उम्र से ही सिंगिंग करने वाली सुनिधि चौहान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। हम सुनिधि चौहान को देते हैं शुभकामनाएं। उनकी आवाज़ की खासियत ये है कि वो कैसा भी माहौल हो, उसे अपनी आवाज़ से एक अलग अंदाज से बदल सकती हैं। उनकी आवाज़ बहुत ही ख़ास है, और आज जब सुनिधि चौहान का बर्थडे है तो उनका गाया हुआ एक और गीत हम सुनते हैं साथ में।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

जयपुर, कभी आपने सोचा है कि जैसा हम सोचते हैं कभी कभी तो ठीक वैसा ही होता है, लेकिन बहुत बार वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। उससे कुछ अलग ही हो जाता है और उस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है। अपने जीवन में हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण ज़रूर हो सकता है। और कैसे हम कंट्रोल करते हैं यही बड़ी बात है। कभी ट्रैफिक परेशान करेगा, कभी काम की टेंशन होगी और कभी रिश्तों की उलझन होगी, लेकिन हर बार जब इस तरह के की उलझने आपके सामने हो, ऐसे ही कुछ तनाव हो जो आपको परेशान कर रहे हो, तो अपनी आंखें बंद करिए और खुद से बस इतना कहिए कि ये समस्याएं बड़ी नहीं हैं, बल्कि इनका सॉल्यूशन बड़ा है और मैं इनका सॉल्यूशन कर लूँगा। एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और दिन की एक अच्छी शुरुआत जो आपने की है मॉर्निंग में, उसे आगे बनाए रखिए। अब जीवन में अलग अलग तरीके की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उन सिचुएशन का हम सामना कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए, परेशान होके, हड़बड़ा के, गुस्से में या मुस्कुराते हुए, वो तो हम पे डिपेंड करता है। अब ट्रैफिक में अगर हम फंस जाएं तो इरिटेट होकर कुछ बड़बड़ाने लगें कि ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कैसे हम निकलेंगे, कब हम निकलेंगे, ऐसा कुछ करते रहें, या फिर जैसे अभी आप हमें सुन रहे हैं वैसे सुनते हुए मुस्कुराते रहें और जो गीत हम चलाएं उन्हें गुनगुनाते रहें और अपने मूड को बहुत अच्छा रखें। आप कौन सी बात को चुनते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और हमारा तो यही कहना है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, थोड़े से शांत रहिए, और किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको फील होती है, अगर आप इरिटेटेड फील करते हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो बहुत कुछ गलत होने की संभावना रहती है। तो बस मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। अभी आज हम प्ले करने जा रहे हैं एक सॉन्ग, और इसके बाद जो भी सॉन्ग होंगे वो आपकी ही पसंद के होंगे, आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं। तो इसके लिए नंबर नोट कीजिए हमारे 01412200600, और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। तो सुनते रहिए हेलो जयपुर, ओनली ऑन 101.2 FM।

101.2 FM। हेलो जयपुर में अब शुरुआत हो चुकी है फरमाइशी फिल्म संगीत की। गीत होंगे वही जिन्हें आप पसंद करेंगे। नंबर भी नोट कर सकते हैं आप हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं। इसे सुनना चाहा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष ने। इज्जत फिल्म का है ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। तो उनकी ही पसंद पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

हेलो जयपुर, सुन रहे हैं आप और हम प्ले कर रहे हैं वही गीत जिन्हें आप पसंद कर रहे हैं। नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। कॉल करके हमें बताइए कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं मोम की गुड़िया फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को सुनना चाहा है रामगंज बाज़ार जयपुर से लोकेश सारवान और उमा सारवान ने।

अभी आप सुन रहे थे मोम की गुड़िया फिल्म का गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर और आनंद पक्षी ने। फरमाइशी फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप। हेलो जयपुर में आपकी ही पसंद के गीत हम प्ले कर रहे हैं। नंबर है हमारे 01412200600।

और दूसरा नंबर है हमारा 0141-236-6477। अगला गीत हम प्ले करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें कॉल आई है जालौर से आफताब जी की। वो सुनना चाहते हैं खुदा गवाह फिल्म का गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने। तो उनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं साथ में। आप भी हमें कॉल करते रहिए और बताते रहिए कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM।

बशीर अहमद जी का बाड़मेर से हमें कॉल आया है, तो उनकी ही पसंद का एक गीत अभी हम सुनेंगे। हेलो जयपुर, आप सुन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM। नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। अब हम पहले प्ले करने जा रहे हैं जालौर से हमें जिस गीत के लिए फरमाइश मिली थी आफताब जी की, उस गीत को। खुदा गवाह फिल्म से है ये गीत और इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने, तो उनकी पसंद का गीत हम पहले प्ले करने जा रहे हैं।

101.2 FM। सो जयपुर, हेलो जयपुर में फरमाइशी फिल्म संगीत में हम प्ले कर रहे हैं आपकी ही पसंद के गीत। इसके लिए आपको हमें करना है कॉल, नंबर है हमारे 0141-2200-600 और दूसरा नंबर है हमारा 0141-2366-477। कॉल करके हमें बताइए कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से, जिसे गाया है राहत फ़तेह अली खान और तुलसी कुमार ने। इस गीत को सुनना चाहा है बाड़मेर से बशीर अहमद ने, तो उनकी ही पसंद पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

अभी तक आपने हमें कॉल नहीं किया है या हमारे नंबर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। कॉल करके हमें बताइए कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं ओनली ऑन 101.2 FM। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें फरमाइश मिली है जौहरी बाजार जयपुर से शांतिलाल पटेल और नारायण पटेल की। वो सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने, तो उनकी ही पसंद पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

हेलो जयपुर में हम प्ले कर रहे हैं आपकी ही पसंद के गीत। नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। नेक्स्ट फरमाइश हमें मिली है चार दीवारी जयपुर से अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अली और सलमान की। ये सुनना चाहते हैं फूल बने अंगारे फिल्म का गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, तो उनकी ही पसंद पर आइए सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: हेलो जयपुर में हम प्ले कर रहे हैं आपकी ही पसंद के गीत। नंबर है हमारे 01412200600 और दूसरा नंबर है हमारा 01412366477। कॉल करके हमें बताइए कि आज कौन सा है वो गीत खास जिसे आप सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं और इस गीत को सुनना चाहा है खलीफा की बावड़ी बाड़मेर से खुदाबख्श खलीफा ने। फिल्म है आंखें और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

अभी आप सुन रहे थे आँखें फिल्म का गीत, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। आपकी ही पसंद के गीत हम प्ले कर रहे हैं हेलो जयपुर में। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें कॉल आया है नाड़ी का फाटक से विष्णु कुमार जांगिर ने। वो सुनना चाहते हैं रखवाला फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। तो उनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं साथ में।

हेलो जयपुर में हम प्ले कर रहे हैं आपकी ही पसंद के गीत। नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें फरमाइश मिली है कोटपुतली से छाजूराम नायक की। वो सुनना चाहते हैं क्रांति फिल्म का गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने, तो उनकी ही पसंद पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृत दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा CBI जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख

0: की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। इसके साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन रहे हैं।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
1: और लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। आज की हमारी कलाकार होंगी कांता देवी। 12:40 पर और दिन में 1:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी परिहारी दोपहर 1:30 पर। आज इस पे चर्चा होगी पारसी नववर्ष और हरियाली तीज पर। बर्तल में बात होंगी स्वाधीनता दिवस पर।

दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कमली सपेरा और पार्टी के गाए कुछ लोकगीत। इसके अलावा नरुद्दीन मेवाती के गाए भी लोकगीत आप सुन सकेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 3:30 पर। फिल्म संगीत एक बार पुनः आप सुनेंगे दिन में 3:00 और शाम 4:30 पर। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00। आज शाम शाम 7:00 भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और 9:30 पर करंट अफेयर्स। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश और फिल्म संगीत 10:30 पर।

श्रोताओं, एक बार हम आपको पुनः याद दिला दें, आज शाम 7 बजे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

दिन के 12:10 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे कांता देवी के गाए कुछ लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे कांता देवी के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रही है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत। फिल्म का नाम है तकदीर का बादशाह।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना कमाल अमरोही की है और संगीत गुलाम मोहम्मद का। फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

0: बंदनी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अग्रिम घोषणा की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। दिन के 1 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से कल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की अगुवाई करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले से प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197, जम्मू कश्मीर के 51, पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में आयोजित तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सादुल शहर उप जिला अस्पताल के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद वे अनूपगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे और बॉर्डर आउटपोस्ट का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री का आज धान मंडी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़े कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि हथकरघा अनुभव केंद्र की भारत के हथकरघा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए परिकल्पना की गई है, जहां पारंपरिक ज्ञान को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि सक्रिय रूप से अभ्यास और अनुभव से आगे बढ़ाया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि उद्घाटन प्रदर्शनी में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 24 पुरस्कार विजेता बुनकरों के उत्पादों और 30 से अधिक चयनित ब्रांड्स भाग लेंगे। प्रदेश के 22 सरकारी विद्यालयों में भामाशाहों के सहयोग से कराए जाने वाले 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में ज्ञान संपर्क पोर्टल पर भामाशाहों की ओर से विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए पेश किए गए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। राज्य परियोजना निदेशक और समन्वयक डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि इन विकास कार्यों से स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार होगा। इनमें भवन निर्माण मरम्मत के साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने संबंधी काम शामिल हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3,993 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं, जो 13 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के माध्यम से 252 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन तथा स्टोर सहित तकनीकी विभागों के पद शामिल हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर होगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू में अच्छी बरसात दर्ज की गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,

0: सिरोही, जयपुर और 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दर्ज की गई। विभाग के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों पर तथा बीकानेर और जोधपुर संभागों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दामिनी, बोल लिखे हैं समीर ने और धुन नदीम श्रवण की है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में आइए सुनते हैं मुकाबला फिल्म का गाना। इब्राहिम अश्क की बोल है और दिलीप सेन समीर सेन की संगीत।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आइए आपको सुनवा रही हैं हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गाना शब्द रचना रविंद्र रवेल की है और संगीत राम लक्ष्मण का।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है 1947 अर्थ। जावेद अख्तर के बोल हैं और ए आर रहमान का संगीत।

सुखविंदर सिंह के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। अब ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पढ़िहारी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

और बाने जिया आपा ढाला ला बिया ढल जावेला। तो त्योहारा रे बारे में आपा ने बाने बताणो है। आगे कार्यक्रम में मैं आपसे ओजू बात करूं ली आपने काल हरे दिन के विषय पर भी। पहली आज हरियाली तीज है तो तीज से जुड़ेड़ो एक चोको सो सुंदर सो गीत आप सभी रे रेडियो सेट ताई पुगारी हूँ। लियोसा आनंद उठाओ।

बिल्कुल सा आनंद लियो आप गीत रो और ओजी को गीत हो वो भी आपने बता दियो कि किया तीजरा मेला भी लाग रहा है और किया देवर भाभी ठिठोली भी कर रहा है कि चालो आपा मेलो देख कर आवा। तो बिल्कुल आपके आसपास भी अगर कोई मेलो लाग रहे हो बहनों तो आपने जरूर भी को आनंद उठानो चाहे पूरे परिवार के साथ आप जाओ और बैठे है जी को आनंद आपने मिले लो भी की तो बात ही कहीं क्योंकि चारों तरफ हरियाली है जदि तो हरियाली तीज है और मेले में भी आपने खूब रंग बिरंगा पोशाका में लोग बाग मिलेला बासू भी बात करो हंसो खूब आनंद आपरे जीवन रो आप उठाओ। अब सा देखो एक बात आपा और करा कि आपा काल रोजी को दिन है राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस रूप में मनावा हाँ काल असी वो राष्ट्रीय आपनों जी को

0: दिवस है वो आपा मना रहे हाँ, स्वतंत्रता दिवस असी वो है काल, और आपा सभी मैं आपना जी का हमेशा की तरह आपा जी का काम करा बे तो करा लही भी के अलावा आपा कार्यक्रम अपनी बहनावा रोहे तो बासू एक निवेदन करा कि आपा जिया अपने अधिकारा के लिए हमेशा सजग रहा हाँ भी है, अपना जी का कर्तव्य है वाक्य ऊपर भी आपा ने ध्यान देना चाहे। और जिया मैं बार पहली बात करी कि आपनी जी की बहना है बे आपने टावरा की नींव सु ही आपने सींचे है और बे ही बाने सिखा सके है कि की प्रकार सु बाने आप रो जीवन आगे चलानो है। एक तो आपा आजकल देखा हाँ अपना जी का टावर है वह बोलने में की प्रकार की भाषा रो प्रयोग कर रहा है, की प्रकार की सभ्यता रो प्रयोग कर रहा है, तो ऐ सब गुण आपा बाने सिखा सका हाँ कि कदे भी ऊंचो नहीं बोलनो, कदे भी की कैसा आगे कोई अभद्र भाषा रो प्रयोग नहीं करनो, छोटी छोटी सी बातें हैं कि अपना जी का टावर अपने अधिकारा री आप बात करें तो बाने अपना कर्तव्य भी आपा बतावा और संविधान जी को है वो भी आपने ये सब मूल अपना अधिकार है जिका की देवे है तो भी कस आगे सागे अपना जी का कर्तव्य है बाको भी भान करावे है। अब सा आज आपा देश री बात कर रहे हैं तो आपने जयपुर री आपा थोड़ी सी बात करा, लाडले दिना में थोड़ा सा जिका अठे नारी निकेतन है या कुष्ठ रोगिया रा आश्रम है बैठे मे लोग गया हा और स्थल रिकॉर्डिंग के आधार पर आपने लिए कार्यक्रम आयोजित करो हो और बैठे चार में रिकॉर्डिंग भी कर लाया भी कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां हैं जिकी आज मैं आपने वो जो हमारे कार्यक्रम में सुनवा रहा हाँ। और देखो सा ए भी एक तरह का लोग है जिका आपरी जी की आज़ादी है वे किया मनावे है बैठे रहे लोग में जिकी बातचीत करी वह सब आपरे लिए भी मैं संजो कर लाया हाँ और अब आपरे लिए भी पूछा रहा हाँ आपरे रेडियो सेट ताई तो सा आने भी आप थोड़ो सो सुनो और गुणों की वह काई बात कर रहा है और किसी बात वह हमने बता रहा है। श्रोतावा आज आपा आया हाँ स्थल रिकॉर्डिंग के लिए कुष्ठ आश्रम जिको की जयपुर रे एक झोटवाड़ा क्षेत्र में स्थित है और आज अठे आपा मानव सेवा ही धर्म है जने आपा एक टैगलाइन मान सका हाँ आंके सागे बात करा आपने सागे अबार जुड़ रहा है अठे का सचिव राकेश कुमार शर्मा जी। तो राकेश जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहवाला कि ई आश्रम में किस प्रकार से लोग रह रहा है वो थोड़ा सो बताओ सा।
1: यहाँ कुष्ठ रोगी विकलांग नेत्रहीन का परिवार सब समेत रहते हैं, है ना। यहाँ का जो भी खर्चा पानी यहाँ का दानी दाता को द्वारा चलता है, सरकार द्वारा सिर्फ पेंशन हमें मिलता है किसी को 1200 किसी को 1500, सरकार द्वारा ये मकान दे रखे 140 परिवारों के लिए 140 मकान दे चुके हैं।
0: तो आ मकाना में रहन हारा जी का लोग है आपा देखा हाँ कि वो कुष्ठ आश्रम है तो वहाँ के बारे में बताओ थोड़ा सोचा।
1: हमारे यहाँ कुष्ठ रोगी लोग रहते हैं कर्नाटक आंध्र पंजाब और उड़ीसा बंगाल बिहार तेलंगाना इस राज्य के आके हम लोग यहाँ रह रहे हैं
0: जी।
1: हम लोग सब एक साथ में भाई बहन सब जो रहते हैं एक साथ में सभी त्यौहार मनाते हैं। हम लोग 15 अगस्त को झंडा भी फहराते हैं सारे भाई बहन मिलके, जो भी हम लोग उनके सहयोग होता है उसी से हम लोग गुजारा कर लेते हैं अपना जीवन गुजार करते हैं अपने परिवार सहित अपने सब में हिंदू मुस्लिम सब भी एक साथ में हम लोग किसी तरह से कोई मतभेद नहीं है सब एक साथ में गणेश पूजा में ईद के त्यौहार मनाते हैं सब एक साथ में होली का त्यौहार एक साथ मनाते हैं हम लोग सब।
0: तो जी हाँ अबार आप बतायो कि सभी त्योहार आप मिलजुल कर मनाओ हो तो अबार आपनो राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस भी है तो सा ई विषय पर आप कुछ कहना चाहोला।
1: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, हमारे पूर्व नेताओं ने हम लोगों को स्वाधीन कर रखा है, स्वाधीन जीने के लिए स्वाधीन रहने के लिए इनके सहयोग हम लोग उनके हैं, आप सबके सहयोग हमारे साथ में है। यहाँ का जो भी गुजारा वगैरह चलता है जयपुर के जानी जाता को द्वारा इनका खाना पीना रहन सहन भोजन व्यवस्था किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सचिव साहब आप हमारे साथ जुड़िया इसके लिए आप रो भी घनो घनो धन्यवाद सा।
2: सचिव साहब की बातचीत तो आप सुन ली तो बैठे रेवाड़ा लोगा की भी बातचीत आप सुन ले।
0: श्रोताओं अब आपने सागर जुड़ रहा है आश्रम में ही विराजेड़ा महान अठे मिले है नूर जहाँ जी। तो नूर जहाँ जी 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बारे में स्वतंत्रता के बारे में आपका काई विचार है?
3: 15 अगस्त को देखो स्वतंत्र दिवस है, सबके लिए मायने रखते सब परिवार के लिए सबके लिए बहुत बहुत मायने है कि बहुत अच्छा दिन है बड़ा दिन है।
0: आपके लिए असली स्वतंत्रता का काय मायना है?
3: क्या मेरे लिए नहीं सबके लिए, सबके लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा दिन है सबके लिए। हाँ आपके लिए शुभकामनाएं।
0: अब सकीना खातून जी भी आपने सागर जुड़ रहे हैं तो सकीना जी आपके लिए 15 अगस्त राज्य का मायना है या स्वतंत्रता रो जो मायनो आपके लिए रखे है वो भी बताओ सर।
4: स्वतंत्रता दिवस ये है कि मेरे बाल बच्चा का हमरो लिए सुकून है, आते बराबर आदमी वो झंडा फिर आते है 15 अगस्त मनाती है तो हम भी मनाती संग संग, इसमें हमें खुश है अच्छी इतना खुशी है कि बराबर आदमी आती है मेरे पास।

0: लोगों से अपनों से बहुत खुश है, बीमारी से मुझे मुक्ति मिल गया है, ये बहुत सस्ता है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और नूरजहां हमारे सागे है, आंसू भी मैं बात करा तो सर आप अठे कितना साल सु हो
2: गए? 40 साल हो गए।
1: आप पहली कठे रहता?
2: पहले हैदराबाद में रहते थे, फिर राजस्थान आ गए, राजस्थान में रहते रहते अभी ऐसे ही काम करते करते अभी यहाँ ही बस गए थे। बीमारी आ गई, बीमारी आने से इलाज पानी हो गया, इलाज पानी से फिर ठीक हो गए, फिर इसमें सब अच्छे हो गए हमारा, फिर के दवाइयाँ पानी खाए सब अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। फिर भी अब कोई शिकायत नहीं अपनी बीमारी का, ऐसा बताए बोले तो जब से हमारा कोई बीमारी है ना कुछ है क्या भी नहीं।
1: तो सर आप स्वतंत्रता दिवस ने क्या मनाया करो हो?
2: 15 अगस्त मनाते है, हर साल मनाते है, अच्छा भी लगता है हमारे को।
1: ठीक सा, आप हमारे साथ जुड़िया, इसके लिए आप सभी रोग खूब खूब धन्यवाद सा। अब एक छोटी सी बच्ची है जिकी आपने साथ जुड़ रही है, आप का ही नाम है बेटा?
3: काव्या।
1: तो काव्या आप स्कूल जाओ?
3: हाँ जाती हूँ।
1: आप रो का ही नाम है?
4: अरमान।
1: तो आप पढ़ो?
4: हाँ।
1: कौन सी क्लास में पढ़ो?
4: 9th।
1: तो स्वतंत्रता दिवस और ईद दिवस पर आप का विशेष करो हो?
4: झंडा फहराते स्कूल में, यहाँ पे गांधी मूर्ति पे टी होती है, मौज होते है, स्कूल में झंडा फहराते है बहुत खुशी से, और लड्डू मिलते हैं वहाँ पे और बाकी सामान मिलते हैं।
1: अब एक और छोटी सी बच्ची आपने सागर जुड़ रही है, आप रो नाम का ही है?
5: जोया।
1: तो जोया आप स्कूल जाओ?
5: जाती हूँ।
1: और अब आज यहाँ 15 अगस्त पर स्कूल में विशेष कार्यक्रम और आयोजन हुए, तो काई काई हुए?
5: डांस।
1: अरे वाह, आप भी करो?
5: करूँगी ना। और डांस होती है, दुकानें खुलती है, और क्या बोलते है सजावट होती है, हाँ मिठाई बनती है, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं।
1: तो एक बाद में आपा नारी निकेतन में भी गया हा, तो बठेरी बाता भी आपने सगले श्रोताओं सागे आपा साझी करा, जिया की बठे आपा ने बठे की निदेशक अंजना मानव बासु भी आपा बातचीत करी ही, बे भी आपरी बातचीत में बतायो कि कुन कुन सी महिलावा अठे आवे है और काई काई बे मदद करे है, तो आओसा यह बात भी सुन लिया।
6: महिला सदन में 18+ महिलाएं आती है, और 3 तरह की महिलाएं आती हैं अभी हमारे महिला सदन में। एक तो वो महिलाएं हैं जो अपने घर से निकल गई हैं और परिवार अब अपना नहीं रहा है, जो कोर्ट के आदेशों से आती है, प्लस SDM या संबंधित थाने या संबंधित जो भी कोर्ट लगता है उसके आदेशों से आती हैं। एक महिलाएं वो हैं जो कोई भी आपने देखा होगा सड़क पे घूमती रहती हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, वो अवसाद वाली जो महिला, डिप्रेशन वाली महिला होता है, उन्हें हम प्रवेशित करते हैं। तीसरी महिलाएं वो हैं जो बहुत छोटी सी कभी शिशुगृह रही थी। हमारा विभाग 3 तरह की महिलाओं के साथ कार्य करता है। सबसे पहले शिशुगृह है जहाँ 0 से 6 साल तक के बच्चे रहते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों साथ रह सकती हैं। 6 साल के बाद में लड़कियां होती हैं जो तो बालिका गृह चली जाती हैं और लड़के किशोर गृह चले जाते हैं, और 18 साल के बाद ये जो बालिका हैं महिला सदन आ जाती हैं। अगर कोई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो हम लोग बिल्कुल पढ़ाते हैं। अभी एक हमारी जो महिला है IAS की तैयारी कर रही है, उसको बाकायदा सर विभाग ने एक अच्छे हॉस्टल की सुविधा दे रखी है, वहाँ पे वो हॉस्टल में रहकर IAS की तैयारी कर रही हैं, कॉलेज जाती है, मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज जा रही हैं, तो वो एक तरह हॉस्टल लाइफ जीती हैं, आराम से आती हैं और जाती हैं, अपनी पढ़ाई करती हैं, अपना जॉब करती हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु क्योंकि 2 तरह की जो महिलाएँ रहती हैं तो उनमें हम लोगों ने थोड़ा सा उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा है, बाकी इनको एक तरह से फुल हम लोगों ने आज़ादी दे रखी, कॉलेज में जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, जॉब करती हैं। ये सारी सरकार ने, ये सारी सुविधाएं हमारे विभाग ने इन महिलाओं को दे रखा है। और ये भी नहीं, कुछ महिला कहती हैं कि हमें शादी करनी है, तो मैं अपने कार्यकाल का बताऊं तो मैंने अभी 2019 में मैं आई थी, और मैंने सबसे पहले 9 आवासनियों का विवाह किया, फिर 12 का किया, और अभी मैंने 4 जुलाई को 11 आवासनियों का किया है। और देख के बड़ी इतनी खुशी होती, इतनी खुश हैं, नए दाम्पत्य जीवन में बड़े आनंदित हैं, और अभी उनको साल भर के जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जब हम उन्हें बुला के उनकी खुशहाली का और फॉलोअप हम लोग करते रहते हैं। उनकी चयन प्रतिक्रिया का तो अभी आज अपन सुने तो बड़ी सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एक ज़माने में सुनते थे कि कोई, मैं पहले शुरू से आपको बताना चाहूँगी, लड़कियाँ जब 18 साल की हो जाती हैं और वो कहती कि हमें विवाह करना है, तो वो एक लिखित प्रार्थना पत्र हम लोगों को देती कि हमें विवाह करवाया जाए। फिर हम उनको मेडिकल के माध्यम से देखते हैं कि फिट फॉर मैरिज है कि नहीं है। जब वो फिट फॉर मैरिज होता है तो हम विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन करवाते हैं कि भाई इस तरह की आवासनियाँ हैं और विवाह योग्य है, अपने आवेदन करें। कुछ तो आवेदन हमारे बाहर रजिस्टर में मेंटेन करके जाते हैं, हम उन्हें फ़ोन के माध्यम से इनवाइट करते हैं, और कुछ ही समाचार पत्र के माध्यम से वो आवेदन आ जाते हैं। उसके बाद उन लड़कों का पारिवारिक जांच, उनकी फैमिली जांच,

0: जिले से वो आवेदन आता है, जैसे अगर अपन सोचे टोंक से आया, तो टोंक का जिला अधिकारी हमारा वहाँ उसके घर पे जाके उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उस इकोनॉमिक्स, उसका मेडिकल, उसका पुलिस सत्यापन, इस सब की जाँच होती है। जब ये सारी जाँच होने के बाद उनकी योग्यता के, ये कमेटी हमारी कलेक्टर इसमें अध्यक्ष हैं, और उनके कलेक्टर के कमेटी के माध्यम से उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और एक चयन प्रतिक्रिया रखते हैं कि ये मापदंड रखते हैं, इसके द्वारा उन लड़कों का चयन किया जाता है। जितने लड़कों का जब उनका चयन हुआ है, तो उन्हें एक लाइन में बिठा के, जैसे स्वयंवर प्रथा हम लोग एक जमाने में सुना करते थे, पर वर्तमान में महिला सदन में उसी तरह से लड़कों का चयन होता है। बाकायदा लड़के खड़े होते, बड़ा रोचक, बड़ा ही मतलब अपना आपको आत्म सम्मानित महसूस होता है कि एक लड़की बाकायदा वो देखती है और अपने 3 बरों का चयन करती हैं वो लड़कियां, कि ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, बिल्कुल स्वयंवर प्रथा के द्वारा लड़कियां अपने शॉर्टलिस्ट करती है। एक लड़की 3 लड़कों का चयन करती है, उसकी वार्तालाप होती है, उसमें से अपना फाइनल खुद ही डिसीजन लेती कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि आज हमारे इस समय इतनी आज़ादी है कि जो हम कभी सुना करते थे कि स्वयंवर प्रथा, तो आज भी महिला सदन में स्वयंवर प्रथा के माध्यम से लड़कियां अपने वर का चयन करती हैं। और दूसरी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इस चयन प्रतिक्रिया में लगती है, क्योंकि हम हमारा जब लड़की का वर चयन करने जाते हैं, तो हम मैं नहीं पूछ पाऊंगी लड़के को कोई HIV भी है कि नहीं है उसे, परंतु हमारे अकॉर्डिंग जब हम चयन करते हैं, तो उसमें HIV का भी देखते हैं, मेडिकल फिटनेस का देखते हैं, इतनी कठिन परीक्षा के माध्यम से हमारे पास भर आते हैं। और फिर उनका सबसे बड़ी बच्ची को अपने CM साहब खुद पधारते हैं, पधार के अपनी बेटी की तरह उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको विदा करते हैं। आप सोच के देखिए कि मैं तो सोचती हूँ कि महिला सदन में एक आवासीय होना अपने आप में बहुत गौरव का विषय है, कि इतनी तरीके से उस बच्ची का विवाह होकर हमारे प्रदेश का सबसे प्रमुख आदमी उन्हें आशीर्वाद देके विदा करता है। तो ये बड़ा गौरव का विषय है यहाँ से बच्ची की शादी हो जाना। और ये भी नहीं, साल भर तक, 2 साल तक हम उसका फॉलोअप करते हैं, फिर भी कोई समस्या आती है तो हम लोग उसका देखते हैं इस मैटर।
1: रवीना हदावत जी भी मिल्या, बे भी आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई और बे काई है तो भाभी आपने सुना दियो।
2: मैं रवीना हदावत विधायकपुरी थाने से सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और आज यहाँ राज्य महिला सदन में मौजूद हूँ, आप लोगों से मिलना हुआ। यहाँ मैं अलग अलग परिस्थितियों से जो महिला जूझ कर आती है उनको हम यहाँ अस्थायी रूप से प्रवेश दिलाते हैं, तो वो यही हमारा एक सेवा कार्य है। शिक्षा का अभाव तो हमेशा रहा है, तो शिक्षा उनको पूरी तरह से अभी तक नहीं मिल पाई है सभी को, वो महत्वपूर्ण कारण है। अगर शिक्षित होगी तो वो अपने बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोच सकती है। थाने पे सभी तरह की महिलाएं आती है, जिनके ऊपर सभी कोई शारीरिक शोषण से कोई मेंटली डिस्टर्ब होती है, सब तरह की महिलाएं होती है, तो हम सभी की उनका कोशिश करते हैं उनका उनका हक मिले। महिला के लिए आज़ादी का मायना होता है कि उसको अपनी स्वतंत्रता मिले, उसको उसको शिक्षा मिले, सबसे महत्वपूर्ण है उसको शिक्षा मिले। उसको शिक्षा मिलेगी तो वो अपने खुद का, आने वाली 7 पीढ़ियों का उनको अपना दर्जा दिलवा पाएगी, तो शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती हूँ मैं।
3: वासावा भांत भांतरी आजादी ई शीर्षक रे अंतर्गत अलग अलग जगह पर स्थल रिकॉर्डिंग रे द्वारा मैं पूछा हा लाला दिना में, और आप रे लिए एक चोखो सोए गुलदस्तो तैयार कर कर लाया, और आप जानियो कि की प्रकार सू हर व्यक्ति रे लिए आज़ादी राजी का मायना है बे न्यारा न्यारा हुए है। अब सा देखो कार्यक्रम में भी मैं ई प्रकार सुकून छोड़ा और अच्छी सी एक बधाई के रूप में, या एक बोले ना कि आप रे लिए पसंद को एक गीत जी को है वो मैं ले आया हाँ, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप ताई वो गीत भी पूग रहे है सा।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

बिल्कुल सा धरती धोरा री और आपने देश राजस्थान री आपने प्रदेश राजस्थान री आपा बात करा तो अठे चारू मेर सावन के महीने में अठे भी चारू मेर हरियाली होवे है। हरियाली तीज आपा काल मनावाला सभी नया पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हरियाली तीज री खूब खूब शुभकामनावा बधाई और आप सभी आपस में रल मिलकर ही सद्भाव और आनंद के साथ सगले त्योहारा रो आप आनंद लो यही हमारी हमेशा मनोकामना रवे है। अब सा देखो स्टूडियो री घड़ी माने इशारो कर रही है कि हारी रो आज रो टाइम पूरो हो तो जा रहे है तो चालता चालता आपा हमेशा की तरह ही कवाला ख्याल राखो आप रो आप रे ख्याला में राखो मारे कार्यक्रम पणिहारी ने ओजू मिलने रे वादे रे सागे आज रे कार्यक्रम सु मने यानी की भावना शर्मा ने दो आज्ञा राम राम सा।

0: भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
2: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील

0: पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
1: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और दूरदर्शन की डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कुटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं।
5: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
6: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
7: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: और लीजिए अब प्रस्तुत है राजस्थानी लोक संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कमली सपेरा और पार्टी के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोतो, राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कमली सपेरा और पार्टी के गाए कुछ लोकगीत। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नरुद्दीन मेवाती के गाया हुआ एक राजस्थानी लोकगीत।

उसके एक हाथ में थी लकड़ी तो एक हाथ में बंधी घड़ी। हमने पूछा अंधे जी एक बात बता दी जाएगी, आपको से अंधे हो ये घड़ी क्या काम आएगी। तो अंधे जी क्या कहते हैं, तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। तू इस घड़ी की बात करे जो एक दिन हटा ली जाएगी, और याद कर उस घड़ी मालिक की जो कभी न टाली जाएगी। अजी राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट भजले ईश्वर ने अर्जेंट है। अजी राम नाम अर्जेंट भजले ईश्वर ने अर्जेंट,

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नूरुद्दीन मेवाती के गाए कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स और दूरदर्शन के DTH चैनल पर भी आप हमें सुन रहे हैं।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है राजा भैया, बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम शर्मा का है।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल सुनों में गिरफ्तार फिल्म का गाना। बोल लिखे हैं इंदिवर ने, संगीत बप्पी लहरी का है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। ये गाना आपने सुना मंजिल फिल्म का, इसे गाया था किशोर कुमार ने, बोल लिखे थे योगेश ने और धुन बनाई थी राहुल देव वर्मन ने। और कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से, इसे गाया है शब्बीर कुमार ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना। इसे हमने लिया है फिल्म लम्हे से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरी का है।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है, कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओ, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धू और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओ, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
2: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन

0: स्थापन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
1: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की माँ ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
2: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर रहे हो।
3: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
2: इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
3: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
2: जैसे तुम्हारी मर्जी।
1: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
4: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
3: जी

0: दादा भाई हूँ।
1: दादा भाई,
0: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
1: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
2: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना,
3: अरे जा कुछ और काम करो।
0: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
4: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
0: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
4: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
0: मेरे साथियों, साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
3: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
0: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
5: लेकिन वो कैसे?
0: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
5: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
1: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
5: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
0: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाएं जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
4: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई, और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज।

राज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूं? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में न जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
6: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो,

0: ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
1: क्या?
0: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
0: अरे भाई, इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
1: हाँ वल्लभ, ये ठीक है।
2: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
3: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी, और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
2: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
4: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
5: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
4: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
5: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
4: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा? तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
5: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
0: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो? यहाँ का क्या समाचार है?
5: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
0: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
5: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
0: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
5: जी।
0: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
5: उससे क्या होगा
0: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं?
5: हाँ।
0: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
2: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर

0: अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
1: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
2: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं।
2: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
3: नहीं।
2: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
3: नहीं।
2: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
3: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
4: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
6: और मंजू जी के साथ

0: कमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अंबिका मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में अंबिका मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

दोस्तों, 14 अगस्त की आज की ये शाम अपने साथ इतिहास की अनगिनत यादें और स्वतंत्रता का गौरव लेकर आती है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस संघर्ष को याद करने का अवसर है जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। कल 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी कि आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन आज की ये पूर्व संध्या हमें उन वीरों को नमन करने का मौका देती है जिनके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली और हम सब उस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं।

दोस्तों, 15 अगस्त का ये पर्व हमारे सबके जीवन में एक राष्ट्रीय उत्सव बनकर आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि अब हम सब खुले आसमान में सांस लेते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन अधिकारों के पीछे कितने संघर्षों की कहानी छिपी है। आज़ादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि सच्ची आज़ादी तो तब है जब देश का हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके, जब शिक्षा और अवसर सब तक पहुँचें, और जब हम जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करें।

श्रद्धा, आप सुन रही हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में आज हम विशेष फिल्म संगीत आपके लिए लेकर आए हैं, और उसका नाम है माँ तुझे सलाम। सदियों की गुलामी के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तो वो एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई सुबह देखी। क्योंकि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों में इन्होंने अपनी बाजी लगाई, क्योंकि हमारी आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत संघर्ष और त्याग बलिदान की कहानी है। महात्मा गांधी का सत्य है तो अहिंसा का मार्ग हो, भगत सिंह का साहस हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का संकल्प, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अदम्य साहस हो, इन सभी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व

समर्पित कर दिया। उन वीरों के साथ उन असंख्य गुमनाम सेनानियों को भी नमन, जिनका नाम इतिहास की किताबों में शायद दर्ज ही नहीं हुआ, लेकिन जिनकी कुर्बानियों ने आज़ादी की नींव मजबूत की।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने भारत की और भारत में उस जज्बे की, उस मिट्टी की खुशबू की और उस तिरंगे की आन बान शान की, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह देश सिर्फ नक्शे पर खिंची सीमाओं का नाम नहीं, भारत उस भावना का नाम है जो हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, गांव की पगडंडियों से लेकर महानगरों की रफ्तार तक दिखाई देती है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, खान पान अलग हैं, वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी दिल तो मगर एक ही है, भारत का दिल, हम हिंदुस्तानियों का दिल।

जिम्मेदार होना, ईमानदारी से अपना काम करना, कानून का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, बेटियों को समान अवसर देना और समाज में भाईचारा बनाए रखना। आज 14 अगस्त की शाम एक संकल्प लें कि हम अपने देश को केवल याद नहीं करेंगे बल्कि अपने छोटे छोटे काम से इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों से नहीं बनता, देश बनता है हर उस नागरिक से जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है। तो आइए आज़ादी की इस पूर्व संध्या पर उन सभी वीरों को शत शत नमन करें जिनके बलिदान से आज हमारा तिरंगा शान से लहराता है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे थे हमारा विशेष फिल्म संगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम और मैं हूं अनुप्रिया। दोस्तों,

तो छूटा वो आंगन वो पीपल, याद आएगा हर वो लम्हा, बचपन की हंसी, माँ की दुआएं, सब छोड़ आया हूँ सरहद के पार, मेरा घर कब लौटूंगा मालूम नहीं, दो कौमों का फासला, खून की लकीरें, मोहब्बत बिखरी, जल गई तस्वीरें, जिन राहों पे मैं खेलता था वो खो गए हैं आज, मोहब्बत बिखरी, जल गई तस्वीरें, जिन राहों पे खेलता था वो खो गए हैं आज, सरहदों के पार है मेरा दिल का नगर, बस याद में रहते हैं मेरा ख्वाबों का घर, मेरा ख्वाबों का घर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं विभाजन की, जो सबसे बड़ा सामूहिक प्रवास था। लगभग 1,40,00,000 लोगों ने सरहदें पार की, 40,00,000 लोग मारे गए, लोगों ने ट्रेनों की छतों पर लद लद कर सफ़र किया, कईयों ने अपनी मंजिल हासिल की लेकिन कई रास्ते में ही मारे गए। लेकिन हम आज उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने किसी और बात की परवाह ना करते हुए अनजान लोगों को, अनजान परिवारों को अपने घर में आसरा दिया, और उन लोगों ने इंसानियत की मिसाल को कायम रखा। आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि इस भयावहता को हम सदैव अपनी स्मृति में रखेंगे और नफ़रत को अपनी विरासत नहीं बनने देंगे, इंसानी की इंसानियत को समझेंगे, जाति या धर्म से एक इंसान को बड़ा समझेंगे। तो आइए, हिंदू मुसलमान के फ़र्क को मिटाएं, इंसानियत को अपनाएं, भारत की इस मिट्टी में मिलकर एक नई सुबह उगाएं, नफ़रत की दीवारें गिराएं, प्यार की नदियां बहाएं, इस काले अध्याय को फिर कभी ना दोहराएं और विभाजन की भयावहता से शांति का संदेश फैलाएं और अपने देश को संभाल कर रखें।

दोस्तों, आज की शाम कुछ अलग है। हवा में जैसे कोई मीठी सी खुशी घुली है, आसमान भी जैसे थोड़ा और खुलकर मुस्कुरा रहा है, और दिल कह रहा है कल फिर तिरंगा पूरे आसमान पर अपनी शान से लहराएगा। दोस्तों, आज़ादी की ये पूर्व संध्या कितनी सुहानी है ना। सड़कों पर रोशनी है, बाजारों में तिरंगे की चमक है, स्कूल कॉलेजों में तैयारियां चल रही हैं, कहीं देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं तो कहीं कोई बच्चा हाथ में छोटा सा तिरंगा लेकर पूरे जोश में दौड़ रहा है। और शायद यही है भारत की खूबसूरती। हमारी आज़ादी सिर्फ इतिहास की तारीख नहीं, बल्कि आज भी हर भारतीय की धड़कन है। तो दोस्तों, आज की इस सुहानी शाम में अगर हवा कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है, अगर आसमान कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है, अगर दिल में कुछ ज़्यादा ही उमंग है, तो शायद वजह यही है। कल हमारा तिरंगा फिर पूरे गर्व के साथ आसमान में लहराएगा, और जब तिरंगा लहराएगा तो सिर्फ हवा नहीं चलेगी, हमारे सपने चलेंगे, हमारी उम्मीदें चलेंगी, हमारे जवानों का साहस चलेगा, हमारे किसानों की मेहनत चलेगी, हमारे वैज्ञानिकों की सोच चलेगी, और चलेगा हमारे युवाओं का जोश, और चलेगा नए भारत का कारवां। तो आइए दोस्तों, इस आज़ादी की पूर्व संध्या पर ना कोई शिकवा ना कोई निराशा, बस एक मुस्कान, एक तिरंगा और एक संकल्प कि हम जहां हैं वहीं से भारत को थोड़ा और बेहतर बनाएं। क्योंकि देश सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं, देश वो एहसास है जो हमारे दिल में बहता है, और वो एहसास आज कह रहा है मेरा भारत, मेरा गर्व। आप सुन रहे हैं युवाणी, और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की इस शाम की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, वक्त हो चला है रोज़गार सूचना का। पहली रोज़गार सूचना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में जूनियर एसोसिएट क्लर्क की। पोस्ट है टोटल 9124। अप्लाई करने की तारीख है 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। दूसरी रोज़गार सूचना है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड फॉर जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, कॉमन रिक्रूटमेंट। टोटल 2005 पोस्ट। अप्लाई करने की तारीख 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.sarkaririzult.com पर। धन्यवाद।
1: जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
6: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
7: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

दोस्तों, आज हमने बात की हमारी प्यारी आज़ादी की। आशा है हम सब मिलकर एक बेहतर देश का निर्माण करेंगे। आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम और मैं थी आपके साथ में अनुप्रिया।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है मीठे मीठे और सुरीले गीत सुनने का, तो अब आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। शब्दों में पिरोया है

अभी आपने सुना ये गीत चक दे इंडिया फिल्म से, सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट, मरीन डिक्रूज की आवाज़ में। गीत को लिखा था जयदीप साहनी ने और इसे संगीतबद्ध किया था सलीम सुलेमान ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

अभी आपने सुना ये गीत अजब प्रेम की गजब कहानी से, शब्दों में पिरोया था आशीष पंडित ने, संगीत से सजाया था प्रीतम दा ने, आवाज़ों से गीत को मुकम्मल बनाया था आतिफ असलम और अलीशा चिनोई ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सांवरिया से। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, गीत में संगीत दिया था मोंटी ने, गीत में आवाज़ दी है शान ने। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म बचनाए हसीनों से। इसे लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत दिया है विशाल और शेखर ने, गाया है के और शिल्पा राव ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म जाने तू या जाने ना से ये गीत। गीतकार थे अब्बास टायर वाला, संगीतकार थे AR रहमान, गायक कलाकार थे राशिद अली। इसी मधुर गीत के साथ फिल्म संगीत की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा जानने का।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश।

8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर फिर से आप संगीत का लुत्फ़ उठा पाएंगे।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनका समय। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे।

0: गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जैसा कि हम सबको पता है, कल स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आज हम इस कड़ी में आपको सुनवाएंगे देश से जुड़े, मिट्टी से जुड़े गीत। तो इस शाम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, मोहम्मद अजीज़ ने और साथियों ने, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कर्मा फिल्म से ये गीत है, आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने सुना ये गीत, अपने वतन से प्रेम जगाने वाला ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दिल जले से। कुमार सानू, आदित्य नारायण ने इसे अपनी आवाज़ से इसमें देश की मिट्टी की खुशबू घोल दी है। जावेद अख्तर ने इसके देश प्रेमी बोल लिखे हैं। अनु मलिक ने सुरीला संगीत इसे दिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से उदित नारायण ने इसे गाया था। जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे थे। जतिन ललित ने इसे संगीत दिया था। आइए सुनते हैं अगला गीत।

अभी आपने सुना ये गीत चकते इंडिया फिल्म से, कृष्णा और सलीम मर्चेंट ने इसे आवाज़ दी थी। जयदीप साहनी ने इसके बोल लिखे थे, संगीत

सलीम सुलेमान ने इसे संगीत दिया था। इसी प्यारे से गीत के साथ हमारी आज की फिल्म संगीत की ये शाम यहीं समाप्त होती है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: अरे घर सूर्य घर।
8: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार स्टेट हुकअप, फिर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ ही देर में 7 बजे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लाल किले पर होने वाले समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति रखी गई है। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा।

समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट्स तथा माय भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को

0: भी लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस कल प्रदेश भर में गौरव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 80वें स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में होगा। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह में राज्य के मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में होने वाले समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी उदयपुर और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह विभिन्न जिलों में अन्य मंत्री तिरंगा फहराएंगे। शेष रहे जिलों में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण करेंगे। इस अवसर पर वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इस बीच स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने सभी से भाईचारा बनाए रखने और देश प्रदेश की उन्नति के लिए भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि ये दिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर प्रदेश में आज कई आयोजन हुए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर विभाजन विभीषिका पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है। उधर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पैनलों के माध्यम से 1947 में हुए विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को दर्शाया गया है। 12वीं संगोष्ठी का आयोजन कर विभाजन के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों का स्मरण किया गया। इस बीच आज झुंझुनू, डीग और नागौर सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई और वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। डीग में तिरंगा यात्रा पर स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिसकर्मी और अग्निशमन सेवा कर्मी शामिल है। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ और सादुल शहर दौरे पर रहे। अनूपगढ़ की धान मंडी में आयोजित जनसभा से श्री शर्मा ने 389 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून में मरम्मत कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगमों को 10-10 करोड़ रुपए, नगर परिषदों को 3-3 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सादुल शहर में भी जनसभा को संबोधित

0: किया। इस दौरान उन्होंने चूनावड़ में दुग्ध शीतलन संयंत्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं चूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ होगा।
0: मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ में बीएसएफ जवानों के साथ संवाद किया। उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठ तथा तस्करी रोकने में बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। श्री शर्मा ने बीएसएफ चौकी की बॉर्डर आउट पोस्ट और सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी को भी देखा। इस दौरान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग को आधुनिक बनाने के लिए 2386 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 954 साधुवाली बनवाला और राष्ट्रीय राजमार्ग 54 बनवाला हनुमानगढ़ को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस परियोजना से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच आवागमन सुगम और तेज हो सकेगा। इसके पूरा होने से लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना व्यस्त क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही भटनेर किले और पुरातात्विक स्थल कालीबंगा म्यूजियम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि सड़कों का मजबूत नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से मॉनसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इस बीच बीते 24 घंटों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सिरोही सहित कुछ स्थानों पर बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा करीब 10 सेंटीमीटर पानी निम्बाहेड़ा में बरसा। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह सामान्य से करीब 30% से ज्यादा पानी बरसा। इससे अब तक हुई वर्षा सामान्य से 5% कम रह गई है। राज्य में अब तक 8 जिलों में अत्यधिक बरसात हुई है, 20 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 450 आंशिक रूप से भर गए हैं और 33 बांध लबालब है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में मॉनसून के दौरान मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय राशि जारी करने की घोषणा की। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। जालौर जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के महाविद्यालयों, मदरसों सहित शैक्षणिक संस्थानों में व्यायाम प्रदर्शन, पीटी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फाइनल अभ्यास हो रहा है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम जालौर में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इस बीच हर ओर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगी छटा नजर आ रही है। 9 तारीख से शुरू हुए इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। तिरंगा रैली, प्रभात फेरी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर से तिरंगा रैली को रवाना

0: किया। रैली कॉलेज सर्किल, राजेंद्र नगर और अस्पताल चौराहा होते हुए नगर परिषद परिसर पहुंची। इस दौरान लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना से जुड़ने का संदेश दिया गया। नगर परिषद सभा भवन में स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित 2 दिन की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिले के भीनमाल शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 5वें चरण के तहत 20 करोड़ 99 लाख रुपए के काम प्रस्तावित हैं। इस संबंध में पंचायत समिति में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव लिए गए। परियोजना के तहत एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़े काम किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर करने के लिए अटल प्रगति पथ योजना के तहत जिले के 5000 से अधिक आबादी वाले 28 गांवों में 56 करोड़ रुपए की लागत से 36.25 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों से जालौर, रानीवाड़ा, सांचौर और आहौर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों को सड़क सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। योजना के मुख्य नोडल अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव देवेश देवल ने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। पात्र किसानों को योजनाओं से जुड़ने, कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त करने और जैविक खेती तथा जल संरक्षण पर भी चर्चा हुई। जालौर स्थित राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के शिशु गृह में नवजात कन्याओं के गृह प्रवेश और आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि जो माता पिता नवजात बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, वे उन्हें पालना गृह में सुरक्षित छोड़ सकते हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बालिकाओं को बेबी किट प्रदान की। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न गृहों का निरीक्षण भी किया गया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए माय भारत जालौर की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें समूह नृत्य, लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, शॉर्ट फिल्म, स्लोगन लेखन, वाद विवाद और कविता प्रतियोगिताएं हुई। विद्यार्थियों और युवाओं ने नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त जीवन के संदेश को अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से रखा। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से पौधरोपण किया जा रहा है। लोगों को पौधे लगाने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव के रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए और पूजा अर्चना की गई। जिले में इस बार बारिश कम होने से जल स्रोतों में पानी की आवक प्रभावित हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद किसानों ने ग्वार, मूंग, मोठ, मतीरा और बाजरा की बुवाई की थी, लेकिन लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण फसलों को पानी की जरूरत महसूस हो रही है। जिले को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। जालौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अब थोड़ी देर पछे देश ने संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किलारी प्राचीर हूँ तिरंगो झंडो फहरावेला। स्वाधीनता दिवस रो राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी कामा सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। और प्रदेश रा घणखर हल्का माए काल हूँ बिरखा माए कमी रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वतंत्रता दिवस काल गौरव और उमाव सागे मनायो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा अब थोड़ी देर पछे 7 बजे देश ने संबोधित करेला। राष्ट्रपति रा संबोधन रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन

सगळा चॅनलला माथा करियो च्या वेळेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल दिल्ली र ऐतिहासिक लाल किला माथा तिरंगो झंडो फहरार देश ने संबोधित करेला। ई मौके राष्ट्रीय स्तर रा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहली दफा राष्ट्रगीत वंदे मातरम ही गायो चावेला।

0: लिस्ट जारी कीनी। वीरता पदक जिंदगी और माल असबाब री हिफाजत करण, अपराध रोकण और अपराधियां ना पकड़बारे दौरान खास हिम्मत बतावन वाला ने दिया जावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज श्री गंगानगर जिला में अनूपगढ़ और सादुल शहर रो दौरों कीनो। अनूपगढ़ री धान मंडी में राखी जी जनसभा में श्री शर्मा विकास रा 389 करोड़ रुपये बत्ता खर्च वाला काम री नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। ई मौके वे प्रदेश में चौमासा री ऋत में मरम्मत रा काम सारू रकम देवन रो ऐलान कीनो।
1: आज मैं अनूपगढ़ से राजस्थान के लिए भी कुछ घोषणाएं कर रहा हूं, क्योंकि मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका को, जो छोटी नगर पालिका है उसके लिए 1 करोड़ रुपए, प्रत्येक नगर पालिका को, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये समिति की गठित करते हुए आवश्यकता वाले स्थानों को चिन्हीकरण करके उसमें काम कराए जाएंगे। पूरे राजस्थान की घोषणा या अनूपगढ़ से हो रही है, ये मैं सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए करता
0: हूं। मुख्यमंत्री सादुल शहर में आई जनसभा ने संबोधित कीनी। इस दौरान वह चुनावड़ में दूध ठंडो करण रो कारखानो खोलन रो ऐलान कीनो।
1: यहाँ मेरे को बताया गया था कि गाजर मंडी की बहुत बड़ी उपयोगिता है, यहाँ गाजर मंडी होनी चाहिए, तो हमने गाजर मंडी भी खोलने का काम आपके यहाँ किया है। मेरे पास काफी बड़ी सूची है, लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इस सादुल शहर के अंदर यहाँ हुए हैं। अब ये कह रहे हैं जूनागढ़ में दुग्ध प्लांट भी लगना चाहिए, 2 132 के दे दिए, 84 करोड़ रुपए दिया है 132 के लिए। अब आप बताइए, इतना काम आपके यहाँ हो रहा है, हर विधानसभा में हो रहा है, और आज मैं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा है, तो ये दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ होगा।
0: मुख्यमंत्री अनूपगढ़ में बीएसएफ रा जवाना सागे बातचीत कीनी। वह देश री हिफाजत री व्यवस्था ने मजबूत करण सागे घुसपैठ और तस्करी रोकण में बीएसएफ रा काम री सराहना कीनी। श्री शर्मा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सागे बीएसएफ चौकी री बॉर्डर आउटपोस्ट और फौजी असलाह री प्रदर्शनी नई निरखी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्री गंगानगर हनुमानगढ़ सड़क ने और बेहतर बनावण सारू 2386 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। इणु नेशनल हाईवे नंबर 954 साधुवाली बनवाला और नेशनल हाईवे नंबर 54 बनवाला हनुमानगढ़ माथे 4 लेन री सड़क बनाई जावेला। वो काम पूरो वेवणु लालगढ़ जट्टन और पक्का सहराना माए यातायात रो दबाव कम फैला और जाम री समस्या आगे फैला। ईसा गई भटनेर रा किला और पुरातात्विक ठौड़ कालीबंगा म्यूजियम समेत दूजी ठौड़ा ताई पहुंच आसान बनेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आ परियोजना मंजूर करण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रो आभार जतायो है। राज्य रा घणखर हलका माए काल और चौमासारी बिरखा मंदी पड़बारा आसार है। हालांकि उत्तराध और उगणी हलका माए कठे कठे बिरखा रा आसार है। ए बीच लाडला 24 घंटा माए चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और सिरोही समेत कठे कठे बिरखा भी। सबु बत्तो करीब 10 सेंटीमीटर पानी चित्तौड़गढ़ जिला रा निम्बाहेड़ा माए बरसियो। जल संसाधन विभाग रा मुजब लाडला सप्ताह सामान्य करीब 30% बत्तो पानी बरसियो। राज्य में हाल तई 8 जिला में जोरदार, 20 जिला में सामान्य और 13 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो है। छोटा मोटा 693 बंधा में 450 थोड़ा घना भरिया है, जबकि 33 बंधा पूरा भर गया है। काल सावन री तीज हरियाली तीज रा तौर मनाई जावेला। खास तौर महिलाओं रो पर्व मानी जावन वाली हरियाली तीज रे मौके मेहंदी लगावन, झूला झूलन और लोकगीतों रो खास महत्व है। कई ठोणा मेला ही भरे है। तीजों पहले आज लोक पर्व सिंजारो मनायो जा रियो है। इनमाए नुवी पढ़नी लुगाइयां ने ससुराल री ओर सिंजारो भेजो जावे है, जिनमाए खास तौर लहरिया सजवा संवरवा रो सामान चूड़ियां और घेवर शामिल वह है। तीजरे मौके पर्यटन विभाग री ओर राजधानी जयपुर माए काल और 16 अगस्त ने तीजरी सवारी निकाली जावेला। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह रा 16 अगस्त ने चित्तौड़गढ़

0: अलवर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारी रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो व संबंधित जिला प्रशासन न सगली जरूरी समस्याओं टेम सर पूरी करन रा हुकम दीना। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ले राओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वां स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा मु थोड़ी देर पछे देश न संबोधित करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लाल किला री प्राचीर तिरंगो झंडो फहरावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में चौमासा रे दौरान मरम्मत और दूजा जरूरी काम सारू रकम जारी करण रो ऐलान कीनो। और प्रदेश रा घनखर हल्का माय काल बिरखा माय कमी रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसमें हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश देंगी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: लाल साहब। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: This is Akashvani. On the eve of Independence Day, we now bring you Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारे स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभिषिक

स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए है। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे

बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में

फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
70 साल और उससे अधिक आयु के लोग

6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को एक कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors

0: the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर और तथा हमारे दूरदर्शन के DTH चैनल पर। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: समूह स्वर में अभी आपने सुना ये देशगान। इसके बोल लिखे थे जगमोहन शर्मा ने, दीपक माथुर ने इसे कंपोज़ किया था। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा, जो हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: दशकों की गंभीर चुनौती नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की डिजिटल अवसंरचना को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। अब समय हो चला है गीतों का, तो आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

रहमान की आवाज़ और उन्हीं के संगीत में अभी आपने सुना ये गीत। इसे लिखा था महबूब ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अभी आपने सुना ये गीत शहीद फिल्म से उदित नारायण और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। देव कोहली ने इसे लिखा था और इसे कंपोज किया था आनंद राज आनंद ने। आइए सुनते हैं इसी कड़ी में देश प्रेम से भरा हुआ एक और गीत।

मातृभूमि के प्रेम से डूबा हुआ फिल्म परदेश से ये गीत आपने सुना हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, नदीम श्रवण ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं अगला गीत।

क्या लोग

हमारे सैनिकों को समर्पित अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रदीप ने ये बोल लिखे थे, सी रामचंद्रन ने इसे संगीत दिया था। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, ये हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा राष्ट्रमंडल खेलों में बेटियों ने देश का मान बढ़ाया। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन टेनिस का खिताब जीता। डूरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में कल भारतीय पुरुष टीम का सामना नीदरलैंड से होगा और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप के चौथे दौर में जॉर्डन वान फॉरेस्ट को हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में देश के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं।
1: इन द रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो वुमेन हैव ओन 8 आउट ऑफ इंडियंस टोटल टैली ऑफ 13 गोल्ड मेडल्स।
0: अब बात कनाडा ओपन पर करते हैं। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में इगा स्वायतेक ने एलिना रिबाकिना को 6-2 6-3 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टोरंटो में खेले गए फाइनल में स्वायतेक ने कैनेडियन टूर्नामेंट में जारी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले सेट में ही बढ़त बना ली। दूसरे सेट में दो मिस बैकहैंड ने स्वायतेक को एक और ब्रेक दिया। रिबाकिना एक चैंपियनशिप पॉइंट बचाने में कामयाब रही, लेकिन स्वायतेक ने पिछले सितंबर के बाद से अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए दूसरे मौके को भुना लिया। यूएस ओपन के मद्देनजर स्वायतेक के लिए ये जीत बहुत अहम है। अमरीका के बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार कैनेडियन ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शेल्टन ने अपने ही देश की पांचवी वरीयता प्राप्त ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3 7-6 से हराया। शेल्टन का ये दूसरा एटीपी मास्टर्स खिताब है। बेन शेल्टन खिताबी जीत के साथ ही इस सदी में एंडी मरे, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद अपने कनाडा ओपन खिताब को सफलतापूर्वक बचाने में सफल रहने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। शेल्टन ने बिना कोई सेट गवाए इस सीजन का चौथा खिताब जीता। इससे पहले 2026 में डेलास, म्यूनिक और स्टुटगार्ट में वे जीत हासिल कर चुके हैं। अमरीकी खिलाड़ी के नाम अब 7 एटीपी टूर खिताब हैं। नाकाशिमा अपने पहले मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और अपना दूसरा एटीपी टूर टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे। नाकाशिमा ने अपना पहला खिताब 2022 में सैन डिएगो में जीता था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष

0: मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। इगा स्वायते की बात कर ली या बेन शेल्टन की, लेकिन मेन्स डबल्स और वुमेन्स डबल्स में क्या कुछ रिजल्ट रहा आज?
1: देखिए प्रशांत, अगर मेंस डबल्स की बात करें तो राफेल मेटोस और ओरलैंडो लूस की जोड़ी ने मैट पाविक और मार्लेलो ओरेविलो की जोड़ी को 5-7, 6-4, 10-6 से हराया। इसके अलावा अगर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो कैटरीना सिनिकोमावा और झांग सुजाई ने सारा ईरानी और नरोलो मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। इन दोनों मुकाबलों की बात अगर हटाएं तो एक ब्रेंडन नकाशिमा ने, जो अपने पहले 1000 मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और वो अपने दूसरा टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने अपना जो पहला टाइटल है वो 2022 में जीता था, हालांकि वो इस प्रयास में असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया।
0: डूरंट का फुटबॉल टूर्नामेंट में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: शिलोंग लाजोंग एफसी की इस जीत से ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर एफसी की क्वार्टर फाइनल में जगह भी पक्की हो गई है। मुकाबले के 26वें मिनट में जोटा ने विपक्षी टीम के डिफेंस को भेदते हुए गोल किया। 4 मिनट बाद शिलोंग लाजोंग ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में लैंगसनिंग के मुखिम ने 49वें मिनट में गोल करके अंतर को आधा कर दिया। 63वें मिनट में वाडाजीद ने शानदार हेडर मारकर स्कोर बराबर कर दिया। 82वें मिनट में शिलोंग लाजोंग को सफलता मिली। सना के हेडर ने लिंगदो को छकाते हुए गोल किया। लैंगसनिंग की ओर से अहमद ने हेडर से गोल किया और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप सी के आखिरी मैच में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयरफोर्स एफटी को 6-0 से करारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत में 17 वर्षीय लामसांग ज्वाला की 25 मिनट में लगाई गई हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन खेल का अहम योगदान रहा। मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने अपना दबदबा बनाते हुए 4th मिनट में बढ़त हासिल कर ली। हाफ टाइम तक जमशेदपुर 1-0 से आगे रही। 55वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने गोल करके जमशेदपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया। 64वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने जमशेदपुर को तीसरी सफलता दिलाई। अमन सीके ने आखिरकार 71वें मिनट में गोल करके अपना नाम स्कोर शीट पर दर्ज कराया। 80वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 17 सब्स्टिट्यूट रियान ने 84वें मिनट में छठा गोल किया। ग्रुप एफ के अपने आखिरी मैच में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी को 6-0 से शिकस्त दी। हलीचरण नार्जरी ने बोडोलैंड एफसी के लिए 4 गोल दागने के साथ 2 गोल में असिस्ट भी किया। भले ही बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन टॉप 2 रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस मैच में हलीचरण नार्जरी ने दोनों हाफ में 2-2 गोल दागे, जबकि ब्रेक के बाद कौशिक दैमारी और गुआगुआमसार गयारी ने भी गोल करके बोडोलैंड एफसी की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टूर्नामेंट में लगातार टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अपनी उम्मीदें बनाए रखी है। मैदान की ओर, भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। देवदत्त ने अभ्यास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की बल्लेबाजी को सुदृढ़ करेंगे। वहीं ध्रुव जुरेल भी पहले से ही स्क्वाड का हिस्सा है। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में इन दोनों में से किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय WTC की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें स्थान पर है। मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम को WTC के फाइनल में जगह बनाना है।
4: वेरी कंफर्टेबल विद द रोल एंड आई थिंक द काइंड ऑफ वे वी हैव बीन

0: progressing in the past 1 year has been very pleasing to see in my perspective, and I think we are taking all the right steps in the right direction. And obviously the main goal is to play the World Test Championship final, which is next year, and we have got about 9 tests, and I think we have to win around 6 or 7 to be able to have a good chance at qualifying. So in terms of that, I think this is a very important series for us, and we have had the right kind of preparation leading up to the series.
1: Captain Shubman Gill ne warm up match mein shatakiye ke liye wale Devdutt Padikkal ki prashansa ki, wahi dusri aur Shrilanka टीम घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर WTC की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगी। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
2: लगातार विशेष इधर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। कैसा रहा आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबलों का हाल?
3: ये प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश 153 रनों की लीड के साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे और उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा योगदान जो है स्टीव स्मिथ ने दिया था, 109 गेंदों पर 71 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें हम बांग्लादेश की, तो हसन महमूद ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो तंजीद हसन तमीम ने 101 रन बनाकर बहुत ही मजबूत शुरुआत दिलाई थी बांग्लादेश को। उसके बाद मोमिनुल और नजम हुसैन सांतो और मुशफिकुर रहीम ने 49, 84, 36 रन के योगदान देकर टीम के जो लीड है उसमें अहम भूमिका निभाई। और अंतिम बल्लेबाजों की श्रेणी में मेहंदी हसन मिराज ने भी 32 रनों का योगदान दिया।
2: जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। विशेष अगर हम इस श्रृंखला की बात की जाए तो आज दूसरा ही दिन है और न जाने कितने रिकॉर्ड बने हैं और कितने ध्वस्त हो गए। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं इस सीरीज में अब तक?
3: प्रशांत, ये सीरीज काफी ऐतिहासिक है क्योंकि 23 साल बाद जो है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कोई टेस्ट मुकाबला खेलने जा रही है। अगर हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 433 जो विकेट थे रंगना हैरत के, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड से विकेट लेने के लिए जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है रिकॉर्ड। वहीं तंजीद हसन पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में, तो ये काफी ऐतिहासिक है और ये सीरीज सभी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
2: अगर विशेष बात की जाए तो दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और बांग्लादेश जो है 153 रन की लीड ले चुका है और कल से भारत और श्रीलंका की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू हो रही है और WTC में जैसा कि शुभमन गिल ने भी बताया कि वो फाइनल खेलना चाहते हैं, तो अगर बांग्लादेश ये मुकाबला जीतता है तो किस तरीके से ये भारत के पक्ष में जाएगा?
3: प्रशांत, अगर बांग्लादेश ये मुकाबला और साथ ही साथ ये सीरीज जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले स्थान पर मौजूद है 87.5 अंकों के साथ, उनके अंकों में काफ़ी गिरावट आएगी और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर संकेत होंगे। सिर्फ भारत को अपने मुकाबलों पर ध्यान देना है और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं
2: जी
3: उनको भी क्या बोलते हैं कि पछाड़ना चाहिए
2: जी। और चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी विश्व कप कल से नीदरलैंड्स में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम कल नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में वेल्स से मुकाबला करेगी, वहीं महिला टीम रविवार को चीन से खेलेगी।
4: लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल वेल्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर उपहार देना चाहेगी। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने एकमात्र विश्व कप 1975 में क्वालालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। इससे पहले 1971 में कांस और 1973 में रजत पदक अपने नाम किया था, लेकिन पिछले 51 साल में पोडियम पर जगह बनाने में भारतीय टीम नाकाम रही है। भारत इंग्लैंड से 17 अगस्त को और पाकिस्तान से 19 अगस्त को लीग चरण में खेलेगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम उसी मानसिकता और तैयारी के साथ उतरेगी जो पिछले 2 ओलंपिक में थी।
5: वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग होता है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जो भी टारगेट हमारे सामने है, वैसे हम टीम उसको लें और ऐसे टीम उसको फेस करें। तो डेफिनेटली आई थिंक कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बट उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो चीज वहाँ पे रहेगी एंड वी बिलीव के जो हमने ट्रेनिंग की है, जो हमने लास्ट मैचेस खेले हैं, उसको लेकर आई थिंक टीम बहुत पूरे कॉन्फिडेंस में है एंड आई बिलीव के हम।
4: वहीं भारतीय महिला टीम को स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे की कप्तानी से बहुत उम्मीदें हैं। सविता पूनिया और बिचू देवी टीम में गोलकीपर हैं। ब्रैक फ्लिकर दीपिका सहरावत पर गोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने जून में नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन किया।

0: नवनीत कौर और युवा मिडफील्डर साक्षी राणा पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय टीम 16 अगस्त को चीन से, 18 को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। नए प्रारूप वाले इस विश्व कप में खेल प्रशंसकों को भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: बात शतरंज पर, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पिछले दौर में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंगफील्ड कप के चौथे दौर में नीदरलैंड्स के जॉर्डन वान फॉरेस्ट को हराया और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय रक्षा बलों की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की सराहना की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
4: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
3: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
4: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
4: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
4: प्रतिष्ठा और अवसर की

0: मानवता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
0: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के

0: लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
2: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
3: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
4: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया, कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: nation to celebrate 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to lead the celebrations from the iconic Red Fort. 78 gallantry awards announced for Defence Forces and Central Armed Police Forces personnel. And flood situation remains grim in Odisha due to relentless monsoon spell. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया की गैर यकीनी की सूरत हाल में भारतीय मईशत तेज रफ्तारी के साथ फरोग पाती हुई अहम मईशत के तौर पर तरक्की कर रही है। यौम आजादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाना मुल्क का अहद है कि हर की तरक्की हर एक फर्द तक पहुंचे। हुकूमत तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ फराहम करने की गरज से पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक जामे इकदाम कर रही है। कल मुल्क 80वां यौम आज़ादी मनाएगा। वज़ीर आज़म ने मोदी तारीखी लाल किले से तकरीबात की क़यादत करेंगे। दिफाई फोर्सेज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अमले के लिए 78 बहादुरी के अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। मानसून की मुसलसल बारिश के बाइस उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दोगुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने पायदार तरक्याती अहदाफ 2030 में से बाज अहदाफ मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, जबकि अमन ताउन मुजाकरात और वसुधैव कुटुंबकम का नजरिया भारत की खारजा पॉलिसी के सुतून हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कई मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं। सदर जमहूरिया ने उजागर किया कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आज वो इलाके जो कभी नक्सलिज्म से मुतासिर थे, वहां अब जोश व जज्बा नजर आ रहा है।
2: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
1: अपने खिताब में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि तलबा भारत के मुस्तकबिल के मेमार हैं और हर फर्द को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत और उसे संवारने में अपना रोल अदा करना चाहिए। पब्लिक मुसाबकती इम्तहानात तलबा के लिए मौके के दरवाजे बन गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इन इम्तहानात में इस्लाहात की खातिर जामे इकदामात कर रही है।
2: सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं।
1: मुआशरे के महरूम तबकात की फलाह बहबूद के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत की सतह से निकाला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुफ्त राशन के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और आयुष्मान भारत

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है और दुनिया भर में होने वाले बरवक्त डिजिटल लेनदेन निस्फ से ज्यादा भारत में होते हैं।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीम के मैदान में लड़कियों की गैर मामूली कारकर्दगी पर भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और रियासती कानून साज संभलियों में खवातीन के लिए 33% नुमाइंदगी मुख्तस करने की गरज से 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मकासद हासिल होने से क़यादत में खवातीन का रोल मजीद मजबूत होगा और हमारी जमहूरियत ज्यादा जामे बनेगी। खेलों के फरोग के बारे में सदर जमहूरिया ने कहा कि खेलों को नौजवानों की तरक्की और मुल्क की तामीर के एक वसीले के तौर पर अपनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि मुल्क 2047 में आज़ादी की सद साला तकरीब तक विकसित भारत की तामीर की जानिब गामजन है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि अंत्योदय के जज्बे से तहरीक हासिल करते हुए मुल्क का अज़्म है कि तरक्की के समरात हर फर्द तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि आज़ादी की तहरीक की अजीम विरासत और उसके नज़रियात को अपनाते हुए मुल्क जदीद तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने योम आज़ादी के मौके पर मुल्क के नाम एक फिक्र अंगेज और हौसला बख्श खिताब पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब मुल्क की ताकत और हर भारतीय की उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का पैगाम मुल्क के लोगों को विकसित भारत के लिए नए जज्बे और पुख्ता अज़्म के साथ काम करने की तरगीब देता है। मुल्क कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाने जा रहा है। वजीर आजम ने मोदी दिल्ली के तारीखी लाल किले से योम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत करेंगे। भारतीय फ़दाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए तकरीब के मकाम पर फूल बरसाए जाएंगे। कौमी परचम फहराने के अमल को 21 तोपों की सलामी के साथ हम आहंग किया जाएगा। वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: लाल किले पर योम आज़ादी की तकरीबात के दौरान पहली बार कौमी गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम के शानदार विरासत के 150 साल पूरा होने की अजीम तकरीब में 2047 तक विकसित भारत के सफर में युवा शक्ति की तवनाई, उमंगों और अहम ताउन को भी उजागर किया जाएगा। इस तकरीब में लड़के और लड़कियां कैडेट समेत बर्री फौज, बहरिया, फजाई फौज और माई भारत वॉलेंटियर्स के 2500 जवान शिरकत करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को लाल किला पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के लिए मदऊ किया गया है। इसमें PM विश्वकर्मा स्कीम के मुस्तफीद फनकारों, PM मुद्रा योजना से मुस्तफीद होने वाली कारोबारी खवातीन, PM स्वनिधि के तहत खांचा फरोशों और भारत टैक्सी के टैक्सी ड्राइवर शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लाल किले पर नस्ब किए गए हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कल योम आज़ादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी, ताकि योम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदऊईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। सभी लाइनों पर मामूल के मुताबिक बाकायदा सर्विस शुरू होने के वक्त तक मेट्रो ट्रेनें 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने योम आज़ादी के मौके पर आज रेल भवन के अहाते के अंदर एक तिरंगा रैली की क़यादत की। रेलवे की वजारत ने कहा कि भारतीय रेलवे मुल्कगीर हर घर तिरंगा मुहिम में फ़ाल तौर पर शिरकत कर रही है और पूरी रेलवे तंजीम में हुब्बुल वतनी, कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के जज्बे की तकरीबात मना रही है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तीसरे मरहले के साथ यकजहती मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर रेल भवन में वसी पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने का भी एहतमाम किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: ईमेल एट airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप ऑन 9289094044।
1: करंट अफेयर्स।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम गुलिस्ता।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसतां हमारा। गुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हों अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आदाब खैर मकदम खुश आमदीद इस खूबसूरत सी बज़्म में जिसका नाम है गुलिस्तां। आपकी दोस्त मैं डॉक्टर ज़ेबा ज़ीनत आपका इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, आज़ादी का ये खूबसूरत त्यौहार मनाने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। कैसी मुश्किलों से हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी को हासिल किया और आज हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ये हमारे लिए बाईस फ़ख्र है, बाईस सताइश है। आप तमाम को भी 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, पेशगी मुबारकबाद दे रही हूँ। कल सुबह 15 अगस्त है और हम झंडा लहराएंगे, हिंदुस्तान का परचम लहराएंगे, सारे आलम को बताएंगे कि ये वो मुल्क है जहाँ गंगा जमनी तहजीब एक साथ हम मिलकर रहते हैं, मोहब्बतों की तिजारत करते हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। आप तमाम को ही आज़ादी का ये जश्न बहुत बहुत मुबारक, 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। सामईन हजरात, आज का गुलिस्तां बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम कलाम शायर भी लेकर आए हैं और तहरीक आज़ादी पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हम बात करेंगे कि उर्दू अदब ने किस तरह से जंग आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में अपना किरदार अदा किया। वहीं हमारे साथ एक शायर हैं, आज उन्होंने मौसम बहार पर भी गज़ल कही है और इश्किया गज़लें भी कही हैं, वहीं कुछ नातिया कलाम भी कहे हैं और तसव्वुफ़ से जुड़े हुए कलाम को भी उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। मेरी मुराद है ग़ुलाम रसूल अनीस साहब, कलामी शायर के साथ आप उनका कलाम सुनेंगे, वहीं एक प्यारा सा नगमा भी सुनेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं हमारे इस ख़ास प्रोग्राम का जिसका नाम है गुलिस्तां। रात के 10 बजे हर जुमे की शब हम आते हैं आपसे बातें करने, लिहाजा आ गई है आपकी दोस्त ज़ेबा लेकर आपका अपना प्रोग्राम गुलिस्तां। तहरीक आज़ादी हिंद में उर्दू अदब की क्या कुछ खदमात रहीं, क्या कुछ काम किए और उर्दू ने किस तरह से परचम लहराया, इस पर आज हम बात करेंगे। बरे सग़ीर की तारीख में तहरीक आज़ादी एक अजीम जद्दोजहद का नाम है। हिंदुस्तान को बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद कराने के लिए मुख्तलिफ तबकों

ये उर्दू जो हिंदुस्तान में ही पली बसी और रच गई। उर्दू ने हिंदुस्तान की आवाम में आज़ादी, इत्तेहाद, कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए नुमाया खदमात अंजाम दी हैं। उर्दू शायरों ने, सहाफ़ियों ने और नसर निगारों ने अपने अपने कलम को आज़ादी की जद्दोजहद का हथियार बनाया, ज़ालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अगर शायरी की बात करें तो तहरीक आज़ादी में उर्दू शायरी ने अवाम के जज्बात की तर्जमानी की है। शेर गोई की बात कहें तो शेर ऐसे ऐसे कहे गए, दिलों में जज्बा भर दिया, वलवला भर दिया, जोश भर दिया। बहादुर शाह जफर की शायरी की बात करें या फिर अल्लामा इकबाल की, आप हसरत मोहानी की बात करें, जोश मलिहाबादी की, हर एक की शायरी ने, चाहे मीर हों या गालिब हों, मजाज हों या जज्बी हों, शायरी एक ऐसा हथियार थी कि जिसने सोतों को जगा दिया। हजरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और कौमी बेदारी और आज़ादी का जज्बा नुमाया तौर पर सामने आया। इनकी शायरी इश्क़े वतन की शायरी थी। जब बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आती है तो उनकी शायरी ने हिंदुस्तान के आवाम को, बिलखसूस नौजवानों में, खुदी बेदारी और कौमी शऊर को पैदा किया। उनकी इब्तदाई नज़मों में हिंदुस्तान से मोहब्बत का जज्बा बहुत नुमाया नज़र आता है। तराना हिंद ने हिंदुस्तानी कौमियत का तसव्वुर इस कदर मकबूल कर दिया कि लोगों के रगोपे में पैवस्त हो गया। जोश की शायरी इनकलाबी शायरी थी। जोश मलिहाबादी ने आवाम को बेदार किया, एहतजाज के लिए लोगों में जज्बा भरा। इसी तरह अकबर इलाहाबादी, जफर अली खान, चकबस्त, ब्रज नारायण चकबस्त, फिराक गोरखपुरी जैसे शौरा ने भी अपने अपने अंदाज में कौमी शऊर पैदा किया। बात सहाफत की करें तो ये एक ऐसा जुमरा था जहां बेहद मेहनत की जा रही थी। फिर चाहे तहरीक आज़ादी में ऐसे अखबार सामने आए जिनका वार अंग्रेज़ों पर बहुत भारी पड़ा, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल हो, अल बलाग हो, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कामरेड हो, जफर अली खान का जमींदार हो, या फिर मौलाना हसरत मोहानी का उर्दूए मौला हो। ये वो अखबार हैं जिन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का रहनुमा बना दिया। उर्दू नसर की अगर बात की जाए तो उर्दू नसर निगारों ने, जिनमें मजमून निगार हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, अदीब हैं, जिनकी तकरीरें, जिनके नावल अफसाने, जिनके मजामीन ने आवाम को बेदार किया, इनमें सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, प्रेमचंद, कृष्णचंद, मंटो, सज्जाद, हैदर यलदरम और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग जिनके नाम आज भी लोगों को अजबर याद हैं। इनकी कलम ने वो काम किया जो शायद बड़े बड़े हथियार भी ना कर पाते। आज़ादी कोई आसानी से मिली हुई चीज़ नहीं है। 1857 की जंग आज़ादी उर्दू अदब की तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखती है। इस दौर में उर्दू शायरी और नसर में हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल और अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जज्बात का इजहार हुआ। गदर के शौरा और अदीबों ने अपने कलाम में आज़ादी की ख्वाहिश और शिकस्त का दर्द बयान किया। बहादुर शाह सफर हों, गालिब और दूसरे अहले कलम की तहरीरों से इस दौर के हालात की अक्कासी होती है। मिर्ज़ा गालिब की तहरीरों ने खुसूसन उनके खतूत से 1857 के वाकयात और दिल्ली की तबाही का तस्किरा सामने आता है। कौमी यकजहती को इस चीज़ ने आगे बढ़ाया है। तहरीकी आज़ादी ने उर्दू अदब के साथ में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को आगे बढ़ाया है। उर्दू एक ऐसी ज़बान बन गई जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बान थी। इसमें लिखने वाले चकवस्त, प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, मुतद्दिद गैर मुस्लिम हजरात भी थे जो जबान के साथ अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे थे। तहरीक आज़ादी के लिए उर्दू ने बहुत बड़ी खिदमत दी है और उर्दू के अदीबों ने भी बहुत खिदमत दी हैं। तहरीक आज़ादी में उर्दू अदब की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि इसने आज़ादी के जज्बे को सिर्फ सियासी जलसों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे शायरी, सहाफत, अफसाने, मजमून, नज़्म और नसर के ज़रिए आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। इकबाल ने वतन से मोहब्बत और कौमी बेदारी का पैगाम दिया। हसरत ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के ज़रिए रूह में इनकलाब पैदा कर दिया। जोश की शायरी ने जोश भर दी, बगावत भर दी। वहीं जफर अली खान ने अपने अखबार के ज़रिए आवाम को बेदार किया। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, इनके ज़रिए भी काफ़ी काम किए गए। और सर सैयद अहमद

ये चिड़ियों की चहकें, ये कोयल का गाना, ये बरखा सुहानी का दिलकश जमाना, ये बरखा सुहानी का दिलकश जमाना है, मस्ती के आलम में हर दिल दीवाना है, मस्ती के आलम में हर

कभी मुझसे बेबात ही रूठ जाना, और हकीकत को भी कोई समझे फसाना। हकी

अपनी से हजी को था अपना बनाना, खुद ब खुद तारे नफस।

खुद तारे नफस जेरो जबर हो जाएगा जब फसा।

ये जिधर भी होंगे एक आलम उधर हो जाएगा, ये जिधर भी होंगे एक आलम उधर हो जाएगा बेअसर।

देखना खुद हो उसने एक दिन, जलवा गर हो जाएगा, देखना खुद हो उसने एक दिन, जलवा गर हो जाएगा। बस रहे महबूब की उल्फत सलामत ये जहां, बस

हम नशीनो हम नवाओ हम सफर हो जाएगा, हम नशीनो हम नवाओ हम सफर हो जाएगा। मक्का बेश खिदमत है। सिर्फ महमूदी है इस दर के आए।

इस वो जिसे चाहेंगे वो ही खूब तर हो जाएगा, वो जिसे

हासिले जिंदगी हो गई, कूचा है यार में घूमना, कूचा है।

0: चारू सू रोशनी हो गई, चारू सू रोशनी हो गई। मकता पेश खिदमत है। चारू सू रोशनी हो गई, जिक्र महबूब से ऐ अनीस, जिक्र महबूब से ऐ अनीस, रहमतों की झड़ी हो गई, रहमतों की झड़ी हो गई।
1: मौसम गुल भी कयामत की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलिस्ता, और अब समय हो चुका है आज की आखिरी फिल्म संगीत श्रृंखला का। इसमें हम आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत। लीजिए प्रस्तुत है पहला गीत फिल्म यादों की बारात से। गायक कलाकार है आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार है आर डी बर्मन।

इस सुंदर से गीत के बाद अगला गीत सुनेंगे फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से किशोर कुमार व लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दबद्ध किया है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की मस्ती भरी आवाज़ में मेरे जीवन साथी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

अभी आपने सुना फिल्म अगर तुम ना होते से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गुलशन बावरा ने इसे शब्द दिए हैं और RD बर्मन ने इसे संगीत। आइए अब सुनते हैं अगला गीत।